ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि तदनुसार दिनांक 19 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ

0: प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।
3: एपिसोड नंबर 408 408।

गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं। उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5 प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्री राम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की इस कड़ी में पेश है ये पहला गीत आपके लिए, तमाशा फिल्म से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान का संगीत।

पेश है ये अगला गीत आपके लिए, मद्रास कैफे फिल्म से पैपोन का गाया हुआ अली हयात के बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत।

पेश है अगला गीत, वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, कौसर मुनीर का, केसर और संगीत साजिद वाजिद का।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार साथियों, आकाशवाणी जोधपुर की इस सुहानी सुबह में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी नीतू सिंधी और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुबह का समय बहुत खास होता है क्योंकि ये सिर्फ सूरज के उगने का वक्त नहीं बल्कि उम्मीदों के जागने का समय भी होता है। कई लोग इस समय अपने काम पर निकल चुके होते हैं, कोई दुकान खोल रहा होता है, कोई खेत की तरफ जा रहा होता है, कोई अपने सपनों के लिए घर से दूर मेहनत कर रहा होता है। और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर मेहनत करने वाला इंसान अपने अंदर एक उम्मीद लेकर चलता है कि शायद आज का दिन कुछ बेहतर होगा। दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कई बार उसका परिणाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो इंसान की सारी थकान मिटा देता है। आज के इस पूरे घंटे में हम बात करेंगे मेहनत की, संघर्ष की और उन लोगों की जो बिना शिकायत ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। साथ होंगे पुराने दौर के कुछ ऐसे सदाबहार गीत जो दिल को सुकून भी देंगे और यादों को ताज़ा भी करेंगे।

जिंदगी में हम अक्सर दूसरों की चमक देखते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे की जो मेहनत है वो नहीं देख पाते। हर सफल इंसान के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है, कई अधूरी रातें, कई असफल कोशिशें और खुद को बार बार संभालने का हौसला। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं दे रही, लेकिन याद रखिए, बीज भी मिट्टी के अंदर काफ़ी समय तक दिखाई नहीं देता, फिर एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा है तो परेशान मत होइए, हो सकता है आपकी मेहनत भी धीरे धीरे आपको मजबूत बना रही हो।

दोस्तों, आज की जो तेज़ भागती हुई ज़िंदगी है उसमें लोग सब लोग जल्दी जल्दी जल्दी चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ समय लेकर बनती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। सोना सोना भी आग में तपकर ही चमकता है, इंसान भी मेहनत और धैर्य से निखरता है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है ना, तो मंजिल देर से मिलेगी लेकिन बहुत बेहतर होगी।

दोस्तों, जो ज़िंदगी है उसमें मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती है, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि कोई रुक जाता है और कोई सीखकर आगे बढ़ जाता है। मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो अक्सर शांत होते हैं, उन्हें शोर नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। कभी खुद को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आज जो संघर्ष है वही कल आपकी ताकत बनेगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो मेहनत का फल होता है वो देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है, और गिरकर जो संभल जाता है वही ज़िंदगी समझ पाता है। सफलता वैसे भी हमेशा धैर्य और मेहनत का साथ देती है, और हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है।

दोस्तों, सुबह का जो ये समय है वो हमें एक संदेश देता है, एक खूबसूरत संदेश देता है। चाहे रात जो है वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन सुबह ज़रूर आती है। इस तरह ज़िंदगी में मुश्किल जो समय है वो भी हमेशा नहीं रहता, और मेहनत और उम्मीद अगर बनी रहे तो हालात ज़रूर बदलते हैं। इसलिए मुस्कुराइए, मेहनत करिए और अपने सपनों को ज़िंदा रखिए।

दोस्तों, जो आजकल लोग हैं वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। दो चार कोशिशों के बाद ऐसा लगता है कि शायद हमसे होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जो लोग इतिहास बनाते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी तो हार ज़रूर देखी होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो लोग रुकते नहीं। किसी ने खूबसूरत बात कही है कि धीरे चलना गलत नहीं है, बस रुक जाना गलत है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए, एक दिन आप बहुत दूर निकल जाएंगे। और ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि दूसरों से तुलना करने से बेहतर है कि खुद को कल से बेहतर बनाएं।

दोस्तों, कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं जो ज़िंदगी को आसान बना सकती है, वो ये हैं कि मेहनत जो है वो कभी तुरंत ताली नहीं दिलाती, लेकिन एक दिन जो है वो पहचान ज़रूर दिला देती है। और हालात जो हैं वो कैसे भी हों, बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब हम बड़े बनते हैं तो हमें बड़े बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हर दिन जो है वो एक नया मौका होता है खुद को फिर से शुरू करने का। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो इंसान है वो मुश्किल समय में जो इंसान मुस्कुरा देता है वो असली मजबूत इंसान बन जाता है।

बहुत ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं, थोड़ी मुस्कान, थोड़ा अपनापन, थोड़ा सुकून भी ज़रूरी है। सुबह की चाय अगर परिवार के साथ हो जाए तो पूरा जो दिन है वो अच्छा गुजर जाता है।

दोस्तों, पुराने जो गीत हैं उनकी सबसे खूबसूरत बात ही ये होती है कि इनमें इतनी सादगी होती है कि ये जो इनके शब्द हैं वो एकदम दिल तक पहुंचते हैं। और शायद ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ी सरल, थोड़ी सच्ची और रिश्तों से भरी हुई। आज लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, लेकिन अपनों के लिए समय निकालना भी

दोस्तों, ज़िंदगी में कभी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। हर इंसान जो है क्यों कहीं ना कहीं अपने हिस्से की जो लड़ाई है वो लड़ रहा होता है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर कभी ये नहीं समझना चाहिए कि उसे कोई परेशानी ही नहीं है। हो सकता है वो भी अंदर से टूटा हो, लेकिन फिर भी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए दूसरों के लिए थोड़ा नरम रहिए और खुद के लिए थोड़ा मजबूत। और याद रखिए, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग जो है वो हमेशा टिके रहते हैं।

दोस्तों पुराने जो गीत हैं वो सिर्फ मतलब जो पुराना संगीत है बेसिकली वो संगीत ही नहीं होता, वो यादें होती है, एहसास होते हैं और कई बार जो ज़िंदगी है उसको समझाने वाले छोटे छोटे संदेश भी। बातें ऐसे ही जारी रहेंगी, प्रोग्राम का नाम कुछ बातें कुछ गीत में। आइए सुनते हैं पहले ये प्यारा सा नगमा।

तो दोस्तों, पुराने गीतों और प्यारी बातों से सजा ये 1 घंटा यहीं समाप्त हो रहा है। जी हाँ, उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में नई उम्मीद छोड़ के गई होगी। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी नीतू और आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी जोधपुर पर। फिर मिलेंगे नई सुबह, नए एहसास और नए गीतों के साथ। मैं छोड़ी चलती हूँ आपको इस खूबसूरत नगमे के साथ। नमस्कार, शुभ प्रभात।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंडी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित

0: करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमरीका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त

0: की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी पांच शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी पांच शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined the stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 तक हमने

0: दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो अपने जहन में ये बात हमेशा रखिए कि जो खोया है उसका गम नहीं, क्योंकि जो पाया है वो भी कुछ कम नहीं। जो नहीं है वो बस एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। खोने और पाने का गणित तो दोस्तों ज़िंदगी भर चलता रहता है, लेकिन गणित की ये पहेली तभी सही तरीके से सुलझती है जब मानव मन में संतोष का समीकरण हो। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसी गुरु मंत्र के साथ शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत की पहली कड़ी आज की टेक्निकल टीम से हमारा परिचय।
1: दोस्तों नमस्कार। की टीम में आज हमारे साथ ट्रांसमीटर पर हैं पारसपुरी गोस्वामी और नरेंद्र सिंह राठौड़। कंट्रोल रूम से साथ मिल रहा है प्रवीण कुमार का। एचपीटी कंसोल पर हमारा साथ दे रही हैं उद्घोषिका नीतू। वहीं एफएम का कंसोल संभाल रही है।

0: उद्घोषिका कविता सांखला। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजय व्यास की और संयोजन है राजेश लामरोड का। और इस पूरी टीम के साथ कार्यक्रम की होस्ट मैं चंद्रकला सुथार
1: और मैं लीना माथुर। तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत गाने नए नवेले के साथ।

0: दोस्तों, जिंदगी के बीच का जिंदगी का फलसफा भी कुछ अजीब है ना। बस तकदीर और तदबीर के बीच का सारा मसला है। वो कहते हैं ना कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा, और जो नहीं है वो मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल जाएगा। पर दोस्तों, जिंदगी को इतना सीरियस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं
1: सही
0: जाएगा।
1: बात है लीना जी, रोते रोते जिंदगी में आने से लेकर लोगों को रुलाकर यहाँ से जाने के बीच का जो सफर है उसमें हंस लो, हंसा लो, क्योंकि आँख की तो फितरत ही है आंसू बहाना।
0: क्या बात है।

Magamala.

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गाने नए नवेले और बात चल रही है जिंदगी की। तो चलो आज थोड़ी बात करते हैं, जो छूट गया है पीछे उसी से मुलाकात करते हैं। ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, अब खोलकर गांठ उसकी उन्हें आज़ाद करते हैं। सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन हाथों से।
1: हाँ चंद्रकला, सब कुछ नहीं बटोर पाएंगे, मगर चंद खुशियों को थामने की शुरुआत तो करते हैं। जो भी मिला है जिंदगी से, गम या खुशी, चलो उन्हीं के साथ अपनी तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं।

दोस्तों, ये दुनिया गोल है ऐसा हम सब सुनते हैं, यानी हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है। कुछ ऐसे ही मुद्दे पर हमने भी एक बहुत सुंदर बात पढ़ी है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। छोटी छोटी सी बात पर रिश्तों को ना तोड़ें, 8 अरब की भीड़ में 8 लोगों को जोड़ें। कोई भी व्यक्ति

0: आपके पास दोस्तों तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से।
1: हाँ, अगर वो भाव से आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव से आया है तो उसकी मदद कीजिए, और अगर प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि ईश्वर ने आपको किसी को प्रभावित करने की क्षमता तो दी है। कुछ बातें जीवन को संजीदगी से जीने और सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन, कोई कितना भी बोले, आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो, समुद्र नहीं सुखा सकती।
0: बिल्कुल, जिंदगी में हार या जीत की परवाह किए बिना रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि जीत मिले या ना मिले, सीख तो मिलेगी ही।
1: बिल्कुल,
0: और इतिहास साक्षी है इस बात का, जिसने रिस्क लेना सीखा है उसी ने इतिहास रचा है।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि चंद्रकला ने अभी कहा कि दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए गोते लगाते रहते हैं और इस पूरे सफ़र में हमारे साथ होते हैं हमारे खूबसूरत रिश्ते। रिश्तों की मिठास जो होती है ना

0: जी हाँ दोस्तों, जैसा कि चंद्रकला ने अभी कहा कि दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए गोते लगाते रहते हैं और इस पूरे सफ़र में हमारे साथ होते हैं हमारे खूबसूरत रिश्ते। रिश्तों की मिठास जो होती है ना, उसको बरकरार रखने के लिए चीनी की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ शब्दों का सही चुनाव रिश्तों में मिठास बरकरार रखता है। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान किसी का दिन खास बना सकती है। इसीलिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसे बहुत ज़्यादा गौर से मत देखिए, ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल जाए। लेकिन जो आपको बुरा लगता है उसे बिल्कुल गौर से देखिए, मुमकिन है कि कोई अच्छाई नज़र आ जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ समय हो रहा है न्यूज़ ब्रेक का और हम रुक रहे हैं न्यूज़ ब्रेक के लिए और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
2: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इससे पहले श्री मोदी ने कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद निवेश में हुई बढ़ोतरी की सराहना की।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। 2 दिन की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में रुकावट के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000

0: हजार पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है, 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय कालेखां से शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए खैरथल, अलवर, नीमराना, बहरोड और सोतानाला तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में ये कॉरिडोर 91 किलोमीटर लंबा होगा और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी जिससे दिल्ली NCR राजस्थान के बीच आवागमन तेज होगा। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेष समिति कल कोटा पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर लूनी रिच्छा स्टेशन पर खड़े प्रभावित कोच का निरीक्षण किया और अग्निकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि ट्रेन के AC कोच में लगी आग की घटना के बाद रेल कर्मियों की तत्परता और आपातकालीन प्रबंधन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 2 दिन का मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। वहीं 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पश्चिमी गर्म हवाओं के असर से पारे में उछाल आया है। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झुलसाती धूप को देखते हुए लोग दिन के समय घरों से निकलने में बच रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल 2 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ। वहीं 10 स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ और पिलानी सबसे गर्म रहे। वहीं जालौर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर मापा गया। आज सरहदी जिलों और दक्षिणी पूर्वी भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट बताया है। इन जिलों में दिन का पारा 42 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से चिन्हित ग्राम पंचायतों में जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संतृप्ति कैंप आयोजित हो रही है। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल इस संबंध में 17 विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने शिविरों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उधर जनजाति जिले डिंगोरपुर में जिला कलेक्टर देशल दान ने अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
2: जिला कलेक्टर देशल दान ने सभी विभागों को दायित्व सौंपते हुए इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की ओर से 25 तरह के कार्य किए जाएंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार।

0: डूंगरपुर।
1: राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के पदक विजेता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित कई खेल शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, हर साल का हर एक दिन अपने आप में एक अलग इतिहास समेटे हुए होता है। हर बीते हुए दिन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जो उस दिन के इतिहास को खास बनाती है। इतिहास में घटित इन घटनाओं से हमें भविष्य के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर।
3: दोस्तों, 19 मई 1521 जब उस्मानी सेना ने लड़ाई के बाद बाल्कन प्रायद्वीप में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्राद पर अधिकार किया था।
2: और 19 मई 1743 जब जियां पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाने को विकसित किया।
3: और 1910 में पृथ्वी हेली धूमकेतु की पूंछ से होकर गुजरी, जो कि इतिहास में पृथ्वी और किसी भी धूमकेतु के सबसे करीब आने की पहली घटना है।
2: और 19 मई 1936 का दिन जब ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट डिटसन वाट ने राडार बनाया और यह प्रणाली आज के ही दिन सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर स्थापित की गई।
3: उन्नीस मई 1950 का दिन जब मिस्र ने स्वेज नहर को इजरायली जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की थी।
2: उन्नीस मई 1971 जब भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहू विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। उन्नीस मई 2002 का दिन था जब चार सदियों की दास्तां के बाद पूर्वी तिमोर नई सहस्त्राब्दी के पहले नए राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा। और 19 मई ही 2008 का दिन था जब भारत और चीन के बीच नाथुला से व्यापार फिर से शुरू हुआ।

0: चलिए दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन विशेष की बात करते हैं। आज यानी कि 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है। 19 मई 2025 को पहले विश्व निष्पक्ष खेल दिवस का उद्घाटन किया गया, जो मित्रता, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेश और गैर भेदभाव की भावना से खेले जाने वाले खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित उत्सव है। निष्पक्ष खेल प्रतिभागियों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है, जिससे प्रतिभागियों के बीच के सांस्कृतिक मतभेद कम होते हैं और उनकी समानता को बढ़ावा मिलता है। ये दिवस युवाओं में इस भावना को सशक्त करता है कि खेल किस तरह के सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और एक मजबूत और एकजुट समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2024 को महासभा ने संकल्प A/RES/78/310 को अपनाया, जिसमें 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया।
1: यह खेल दोस्तों डोपिंग और हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है और साथ ही सामाजिक एकता को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य यही है कि यह दिन मित्रता, एकजुटता, सहिष्णुता और समावेशिता की भावना से खेलों को प्रोत्साहित करता है। और इसके महत्व को देखा जाए तो यह खिलाड़ियों को नियमों का पालन करने और विरोधियों के प्रति सम्मान रखने के लिए प्रेरित करता है। इसका सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। यह दिन खेल के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने और सांस्कृतिक मतभेदों को कम करने पर जोर देता है। यह दिन केवल पेशेवर खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी स्तर पर खेल से जुड़ा है, ताकि खेल को एक सकारात्मक सामाजिक शक्ति बनाया जा सके। खेल की दुनिया में ईमानदारी सबसे बड़ा पदक है दोस्तों। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जीत से पहले खेल की भावना को प्राथमिकता देना है।
0: निष्पक्ष खेल का प्रदर्शन करके ही ओलंपिक मूल्यों और स्वयं ओलंपवाद को प्राप्त किया जा सकता है। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी निष्पक्ष खेल दिवस की एक थीम रखी गई है और वो थीम है खेल का पुल बनाना और बाधाएं तोड़ना। यह थीम खेल की उन अद्वितीय क्षमताओं पर जोर देती है जो समाजों, संस्कृतियों और पीढ़ियों के बीच संबंध, समावेश और शांति को बढ़ावा देते हैं।

दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन का हमारा सप्ताह विशेष सेगमेंट होता है आओ जाने खेल। इसी क्रम में हम हमेशा चर्चा करते हैं किसी इंडोर या आउटडोर गेम के बारे में, तो आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे तैराकी की बटरफ्लाई तरीके की। बटरफ्लाई तैराकी की सबसे ऊर्जावान चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक है। जो तैराकी के तरीके हैं उनमें बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीका है। वैसे तो स्विमिंग अपने आप में एक ऊर्जावान खेल है, लेकिन इस तरीके में जो तैराक है वो अपने हाथों और पैरों से एक सुंदर तालमेल के साथ पानी में मशक्कत करता है। थोड़ा सा आम तरीके से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तरीका है। इसमें तैराक को दोनों हाथों को पानी के ऊपर से एक साथ आगे ले जाकर पानी में प्रवेश करवाया जाता है। इसके बाद तैराक दोनों हाथों को एक साथ घुमाते हुए अर्धवृत्ताकार गति से छाती के नीचे से होते हुए हाथों को पीछे खींचता हुआ पानी को पीछे धकेलता है और अपने दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर लहरदार गति से किक मारते हुए आगे बढ़ता है और इस किक को डॉल्फिन किक कहते हैं। ये किक जो है तैराक की कूल्हों से शुरू होती है। इस डॉल्फिन किक के कारण तैराक का मूवमेंट डॉल्फिन की तरह होता है, मतलब कि पानी में जिस तरीके से डॉल्फिन फिश तैरती है उसी तरीके से तैराक चलता है। जहां तक तैराकी के दौरान उसके सांस लेने की बात है, तो जब वो

0: हाथों को पानी से बाहर निकालकर पीछे खींचते हुए रिकवरी मोड में होता है, उसी दौरान तैराक अपने सिर को थोड़ा सा पानी से ऊपर उठाकर सामने से जल्दी से सांस ले लेता है।
1: और बटरफ्लाई में सांस लेना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। जब हाथ पीछे की ओर खींच रहे होते हैं, तब ठुड्डी को पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठाकर सांस ली जाती है। सांस लेने के तुरंत बाद सिर को वापस पानी में डाल देना इसमें होता है, और इससे पहले कि हाथ रिकवर पूरी करके पानी में वापस आए, यही सांस लेने में की इसमें तकनीक होती है। और बटरफ्लाई स्ट्रोक में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप इसकी लहरदार गति को समझ लेते हैं, तो यह तैराकी का सबसे रोमांचक अनुभव बन जाता है। भारत में बटरफ्लाई तैराकी की बात करें, तो कुछ ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है। सजन प्रकाश को भारत के बटरफ्लाई किंग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वीर धवल खाड़े भारत के सबसे अनुभवी और तेज तैराकों में से एक हैं। पैरा तैराकी की दुनिया में सुयश जाधव एक बड़ा नाम है दोस्तों। उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर बटरफ्लाई श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। और महिला खिलाड़ी की बात करें, तो आस्था चौधरी बटरफ्लाई श्रेणी में एक उभरती हुई खिलाड़ी हैं, नयना कश्यप हैं। और भारत में इन खिलाड़ियों की सफलता ने नई पीढ़ी को इस कठिन स्ट्रोक को अपनाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया है।

0: सब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: दोस्तों अब कर लेते हैं एक खास बात। खास बात यह है कि आज विश्व आईबीडी दिवस है। इसका पूरा नाम इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज़ है और हर साल 19 मई को यह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आईबीडी के बारे में जागरूकता फैलाना और दुनिया भर में इससे प्रभावित लाखों लोगों को एक मंच पर लाना है। आईबीडी कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि पाचन तंत्र से जुड़ी एक गंभीर समस्याओं का समूह है। आईबीडी मुख्य रूप से दो तरह की होती है दोस्तों। पहली अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, यह बड़ी आंत और मलाशय में सूजन और छाले पैदा करता है। दूसरी होती है क्रोहन डिजीज, ये पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है और सूजन आंत की गहराई तक जा सकती है। इसमें इसके मुख्य लक्षण और प्रभाव की बात की जाए तो आईबीडी के लक्षण में हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होते हैं वो? लगातार पेट में दर्द और मरोड़ आना, गंभीर और पुरानी दस्त लगना, मल के साथ खून आना और अचानक वजन कम होना और थकान सी महसूस होना, भूख में कमी भी इसमें महसूस होती है। और इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आईबीडी केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि यह है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन और काम करने की क्षमता पर भी गहरा असर डालती है। पाचन संबंधी समस्याओं पर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं और जो यह दिन है वो इसी झिझक को दूर करने का अवसर देता है। लक्षणों को सही समय पर पहचान कर सही इलाज शुरू करने से भविष्य की जटिलताओं जैसे सर्जरी है उससे बचा जा सकता है। इसमें सही जानकारी, संतुलित जीवन शैली और चिकित्सा सहायता के साथ इस स्थिति को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाता है। इस 19 मई को आइए हम भी अदृश्य बीमारी के बारे में जागरूक होने और दूसरों को शिक्षित करने का संकल्प लें। यही थी आज की खास बात।

नमस्कार। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम बात करते हैं आज के काम की बात के बारे में। आज की काम की बात में हम बात करेंगे पेट्स, यानी कि जो हमारे पालतू जानवर हैं उनकी देखभाल हम कैसे करें। दोस्तों, पालतू जानवर को घर में लाना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन पालतू जानवरों के साथ साथ घर में आता है जिम्मेदारियों का कारवां। हर पालतू जानवर के मालिक के लिए ये ज़रूरी है कि वो पालतू जानवरों को खुश और स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें मुहैया करवाए। वैसे तो हमारे सारे पालतू जानवरों की देखरेख के बेसिक नियम लगभग एक से ही होते हैं कि उनको साफ़ सफाई, खाना समय पर देना, उनके वैक्सीनेशन की ध्यान रखना, यही सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ अगर मैं सारे जानवरों की बात करने बैठूंगी तो समय का प्रबंधन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए हम बात करते हैं सिर्फ पालतू डॉगी के बारे में, यानी कि डॉगी का बच्चा यानी कि पपी के बारे में। पपी को पालतू बनाकर घर लाने के समय उसकी जो उम्र हो वो 8 से 12 हफ्ते तक की हो तो ठीक रहता है। इसका कारण ये है कि 2 से 3 महीने की उम्र में एक पपी अपनी माँ से सभी ज़रूरी आदतें सीख चुका होता है और इंसानों के साथ जुड़ने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो सकता है। उसको ट्रेनिंग देना आसान होता है और वो नए माहौल में जल्दी ही घुल मिल जाता है। एक बच्चा जो अपनी माँ को पूरी दुनिया मानता है, वो जब आपके परिवार में आता है और बड़ा होने लगता है तो वो आपको और आपके परिवार को ही पूरी दुनिया मान लेता है। इससे ज़्यादा छोटी उम्र में पपी को माँ से अलग करने में उस पपी में डर या गुस्से की भावना पैदा हो सकती है। हालांकि बड़े उम्र की डॉगी को भी अपनाया जा सकता है, लेकिन फिर वो आपके हिसाब से ट्रेंड होने में उसे थोड़ी सी मुश्किल आएगी। आप जब एक पपी को घर लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसके पोषण और खान पान का सही समय अंतराल के साथ मैनेज करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो पपी चूंकि ग्रोइंग एज में है तो उसको थोड़े थोड़े समय अंतराल के साथ थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई बार देना चाहिए। पपी के लिए ज़रूरी पोषक तत्व प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है और उसके लिए उसे चिकन, अंडा, मछली, चावल, ओट्स, सब्जियों में गाजर, कद्दू, बीन्स या बॉइल्ड पोटैटो, ये सब देना चाहिए। पीने के लिए हर बार साफ और स्वच्छ पानी दीजिए। पपी के खाने और पानी के बर्तनों को हर बार साफ करिए, मतलब हर बार साफ किए हुए बर्तन में ही आप खाना और पानी दें। वहीं जो बड़े डॉगीज होते हैं उनको आम तौर पर दिन में 2 ही बार खाना दिया जाता है। खाने और पोषण के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है वैक्सीनेशन। एक पपी का वैक्सीनेशन लगभग 6वें और 8वें हफ्ते से शुरू होता है और ये वैक्सीनेशन जो है रेबीज़, डिस्टेम्पर, पार्वो वायरस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का प्रिवेंशन है। पपी की नियमित डॉक्टरी जांच भी ज़रूरी है। सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ साथ टिप्स और पिस्सुओं के से बचाव और डीवार्मिंग भी बहुत ज़रूरी है। और अब अगर हम बात करें सबसे ज़रूरी उनके साफ़ सफाई की, तो उन्हें साफ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नहलाना जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। पपी को लगभग 2 से 3 हफ्ते में एक बार नहलाएं। हर बार डॉग शैम्पू का इस्तेमाल करें। नहलाने के बाद उनके शरीर को अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर होते हैं बाल और गीले बालों में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। उनके बालों को अच्छे से ब्रश करें, उनके कानों को साफ करें। इसके साथ साथ उन्हें उठने बैठने की और आपके सारे कमांड फॉलो करने की ट्रेनिंग दें। पपी के साथ भी प्यार से पेश आएं और प्यार से ही उन्हें ट्रेनिंग दें, क्योंकि वो आपकी भावनाएं समझते हैं। पपी के दिल में भी प्यार, डर, खुशी

जलन, उदासी, अकेलेपन की इन सब भावनाओं का उसके मन में भी एक बोलबाला रहता है। वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो पूंछ हिलाकर, उछल कर, खेल कर आपके प्रति अपना प्यार जताते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सैर। उन्हें सुबह शाम सैर पर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही पोषण, सही माहौल, प्रॉपर केयर और आपका ढेर सारा प्यार उस पपी को आपके परिवार का सबसे चहेता साथी बना देता है। क्योंकि डॉगी जो है वो फितरत से मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त, वफादार साथी और बिना किसी शर्त के प्यार देने वाला दोस्त होता है।

0: और दोस्तों अब चलते चलते कार्यक्रम का वो पड़ाव आ गया है जहां हम बात करते हैं आज के दिन के जन्म दिवस की। आज भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को जयंती दिवस पर हम याद करते हैं। 19 मई 1913 में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि अनुभवी राजनेता, कवि और कुशल प्रशासक के रूप में थी। आज उनके जयंती दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं और उन्हीं के साथ 19 मई को हम जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं टीसी योहानन को। 19 मई 1947 को जन्मे टीसी योहानन भारत के ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने भारत में लंबी कूद को एक नई दिशा प्रदान की। वर्ष 1972 में टीसी योहानन ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजय हासिल की और 1973 में उन्होंने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 7.78 मीटर की लंबी छलांग लगाई। टीसी योहानन को उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा के रूप में सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों बधाइयां देते हैं और उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं।
1: और दोस्तों बधाई देते हैं इस मंच से रस्किन बॉन्ड को। भारतीय आज उनका भी जन्मदिन है। भारतीय साहित्य जगत के ऐसे रत्न हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं को बेहद खूबसूरती से पिरोया है। पिछले 7 दशकों में वे पाठकों, विशेषकर बच्चों और किशोरों के दिलों पर राज करते रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से आप एक हैं। उनकी प्रसिद्धि विशेष रूप से बाल साहित्य की रचना को लेकर है। उनकी कहानियों में बच्चों के सपने, उनकी इच्छाओं का जिक्र तो होता ही है, बच्चों के संघर्ष की कहानियां भी होती है। और इनके माता पिता ब्रिटिश थे दोस्तों, और वे मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे। उनकी माता भी ब्रिटिश मूल की थी लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण भारत में हुआ। रस्किन बॉन्ड ने भी हमेशा भारत में रहने का विकल्प चुना। इस मंच से उनको पुनः बधाई देते हैं और याद कर लेते हैं गिरीश कर्नाड को, एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड की आज जयंती है। उन्होंने हिंदी में उत्सव, मंथन, इकबाल, डोर, निशांत, पुकार जैसी फिल्मों में काम किया। गिरीश कर्नाड ने वर्ष 1970 में कन्नड़ फिल्म संस्कार से अपनी फिल्म के करियर की शुरुआत की थी, जिसकी पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी। इस फिल्म के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। इसके अलावा उन्हें 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण और कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: दोस्तों आज के नमस्कार के अंक को देते हैं यही विराम। इस सफर में मैं थी आपके साथ चंद्रकला सुथार
1: और मैं लीना माथुर। तो अनुमति दीजिए हम दोनों को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, लोक संगीत।

कपिल जांगिड़, अनुप्रिया लखावत और रोजी खां की आवाज में सुन रहे थे आप ये लोकगीत। पेश है अगला लोकगीत मोती खान की आवाज भी।

कविता शर्मा के गाए हुए इस लोकगीत के बाद आइए सुनते हैं शमसुद्दीन का गाया हुआ ये अगला लोकगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत।

जहान किसका है, हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है।

तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ। जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली को। इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे राग पहाड़ी पर आधारित कुछ बेहतरीन गीत। शुरुआत करते हैं फिल्म आज और कल के इस गीत के साथ, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत है रवि का और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

वो कौन थी? इस फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बोल है राजा मेहदी अली खान के, संगीत है मदन मोहन का और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर।

आयशतों कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म ताजमहल का ये गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे 14वीं का चांद फिल्म से। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार रवि, और इस गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आज आप सुन रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित कुछ क्लासिकल हिंदी गीत।

श्रोता अंसारी, साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हम दोनों से। संगीत जयदेव का था और इस गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना दुलारी फिल्म से। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद और इस गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी ने। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म से। बोल है SH बिहारी के संगीत OP नैयर का और इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एसडी बर्मन, और इस गीत को गाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं महबूबा फिल्म का ये गीत।

पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ

श्रोताओं, ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म हमराज से, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि, और इस गीत को गाया महेंद्र कपूर ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज की फिल्म संगीत में आपने सुना राग पहाड़ी पर आधारित कुछ बेहतरीन सदाबहार फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं चंपा मेथी पार्टी के स्वरों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत में आप सुन रहे थे कालूनाथ पार्टी का गाया ये लोकगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में अगला लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं हरिहरन के स्वरों में अगली रचना।

0: इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र

नरेन्द्र मोदी पांच देशों की यात्रा में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय के साथ स्थानीय इटालियन कारोबारियों में उत्साह है। वे भारत में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय कोयला

0: सिंध जिले के राजपुरा दरेबा में हिंदुस्तान जिंक संयंत्र का जायजा लिया। उन्होंने राजस्थान में प्रौद्योगिकी आधारित भूमिगत खनन, एकीकृत धातु गलाने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक का परिचालन विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11 लाख टन से अधिक परिष्कृत उत्पादन क्षमता के साथ ये संयंत्र आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण पेश करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। इधर राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.94 रूपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल 94.17 रूपये प्रति लीटर हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों की इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने के भी निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पारदर्शिता की पहल को आगे बढ़ाते हुए भूमि आवंटन का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि साल 2014 से 2026 तक जमीन के बदले जमीन से संबंधित मामलों में आवंटित भूमि का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या और आकार सहित अन्य जरूरी ब्यौरा शामिल किया गया है, जिससे आम लोगों और संबंधित पक्ष को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे और आसानी से समुचित जानकारी मिल सके। ये पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रदेश में ईंधन बचत मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका में अनुकरणीय पहल देखने को मिल रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित सभी कार्मिक साइकिल से दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स मुकाबले से बाहर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुनवाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भैया आपा खेती बाड़ी राज्य का काम काज है वे तो आपा लघु ही कर रहा हाँ इनरे आगे आगे आपा पशुपालन भी काम काज करिया कर रहा और हमें आगे उनाड़ो भी आवेला कई किसान भाई खेतर महीने जिकी खेलिया बायोड़ी है उठे हांगरिया भी लागी है खेतरे माठारे माथे कैरारा जी का रूकड़ा है उठे केयर भी बढ़िया आपरे लाग रिया है तो आपरे केयर भी तोड़ रिया है साथे काची काची जी की सांगरिया है वेब तोड़ परा और नजदीक रो जी को मार्केट है बाजार है।

पोषक अनाज में मैग्नीशियम भी खूब मात्रा में हुआ करे, जिको सिर दर्द और जिका दिल जिका दौरा पड़िया करे उन प्रभाव कम करने में बहुत सहायक और कारगर हुआ करे। पोषक फसल में उपस्थित नियासिन जिन आपा विटामिन B3 किया करा कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सहायता मिलिया करे। पोषक अनाज लसा मुक्त और बिना एलर्जी वाला हुआ करे और उत्तम अनाज रूप में मानी जा करे। पोषक अनाज में आपा प्रोटीन री बात करा तो लंगे टंगे 15% जिको प्रोटीन है होया करे और शाकाहारी भोजन वास्ते बहुत बढ़िया हो मानी जा करे। पौष्टिकता री कमी और घटती प्रतिरोधक क्षमता जिन्हें आपा इम्यूनिटी किया करा गंभीर समस्या अबारे बगत में बनती जा रही है। इन वास्ते आपाने बाजरो है, जवार है, सावा है, कोदो, रागी, कंगनी, कुटकी जिन्हें मैंने पोषक अनाज रूप में आपा इन्हें ग्रहण कर सका, आपा इन्होंने जीम सका। कुल मिलान बात है कि अपने अपने भोजन में पोषक अनाज ने आहार रूप में उपयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से अपन बात करा चावल, रोटी, मुड़मुड़ा, उपमा, डोसा, थालीपट, खिचड़ी, पुलाव, पुदीना राइस, दही, चावल, भात आदि रूप में अपन इन्हें खाया करा। पोषक अनाज में ढोकला है, उत्पम है, थालीपट है, डोसा है, पुड्डू, इडली आदि है, ये भी हुआ करे। इनके साथ साथ अपा लड्डू है, खीर है, हलुआ है, ये भी बना परार मुख्य उत्पाद रूप में भी अपन इन्हें जीम सका। कोशिश अपन ने आ करनी चाहिए कि भाई जीवन में अपने पोषक जिका अनाज है इनका उपयोग ज्यादा करना चाहिए और खास तौर से प्राथमिकता भी अपने देनी चाहिए जिनसु उत्पादन भी बढ़िया हुए है और इन उत्पादन में नई नई जी की तकनीका है इनरो भी उपयोग प्रयोग किसान भाई आप करे और अच्छी पैदावार लेवे और इनके साथ साथ मृदा जी की है गुणवत्ता पूर्वक मृदारी भी आवश्यकता नहीं हुआ करे क्योंकि ऐ जी का पोषक अनाज है ऐ शुष्क क्षेत्र है या कम उपजाऊ जी की भूमि है उनारे वास्ते बहुत ही वरदान हुआ करे और कृत्रिम रूप से जी का उर्वरक है उनारो भी उपयोग अपने नहीं करना पड़े। खेत में जी की बनियोड़ी जी की खाद है इनके साथ साथ जी का घरेलू अपशिष्ट उपयोग करता था का आपा जी की खादा बनाया करा ऐ आपा काम में लेवा और ऐ जी का पोषक अनाज है खूब उत्पादित होवे और सबसे मोटी बात है कि भंडारण भी पोषक अनाजरो अच्छी तरह से हो सके। कीट जी का है वे भी ज्यादा प्रभावित नहीं क्रिया करे और आज की खेती आपा करा कीटनाशकों आपा प्रयोग भी नहीं करा तो अपने कृषि पर्यावरण वास्ते भी बहुत ही उत्तम मानी जा करे। आपसु बात मंत्रल भले करनी चाहवा कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है। दिनेश राणे जाने शिख दिराओ राम राम।

0: मन चंचल मन बांवरा, समझे न कोई बात, कभी खुशी में झूम उठे कभी रोए आधी रात।
1: कभी सपनों के संग उड़कर छूले ऊंची सौगात, कभी अपने ही साये से करता ये सवालात। सखियों, आज के नारी वाटिका में आपकी अपनी दो सखियां मधु बनर्जी और
0: आशा आडवाणी
1: के साथ होंगी मन की बातें।
0: वही मन जो हम सबको चला रहा है अपनी चाल, तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की परिकल्पना पूरे मन के साथ की है सफलता चारण ने।

0: सखियों मन जो है वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मन जो कभी समंदर की तरह शांत तो कभी तूफानों सा बेचैन, कभी छोटी सी खुशी में खिल उठता है तो कभी छोटी सी बात पर टूट भी जाता है। अजीब है ना ये मन।
1: किसी की एक मुस्कान से पूरा दिन रोशन हो जाता है और किसी की एक बात से रातों की नींद भी छीन लेता है ये मन। कभी मन बच्चों की तरह जिद करता है, कभी माँ की तरह संभालता है यही मन, तो कभी परिंदों की तरह उड़ना चाहता है, तो कभी अकेले में चुपचाप से अपने आप से बातें करके अपने दर्द को याद करके रो भी लेता है ये मन।
0: कभी ये बीते कल की गलियों में भटकता हुआ नजर आता है, तो कभी आने वाले कल के सपनों में रंग भरने लगता है। मन ही तो वो आईना है जिसमें हमारे डर भी दिखते हैं और हमारे हौसले भी।
1: और मधु, जब ये मन खुश होता है ना, तो सिंपल सी सुबह भी एक त्योहार की तरह लगने लगती है, और जब मन उदास होता है तो भीड़ में भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। इसलिए कहते हैं ना, मन को समझ लेना जिंदगी को समझ लेना है।

0: सखियों, जब हम खुश होते हैं ना तो हमारे मन में एक तारा गूंजता है। ये जो मन है ना, एक खिड़की की तरह होता है ना आशा। सुबह सुबह जब हम अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं ना, तो हमें दिखती हैं दौड़ती भागती गाड़ियाँ, धूप, आसमान। लेकिन कभी सोचा है, एक खिड़की जो है वो हमारे अंदर भी है, हमारे भीतर, जिसे हम कहते हैं मन की खिड़की।
1: और पता है मधु, बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो या कभी कड़ाके की ठंड, अगर हमारे मन की खिड़की साफ है तो जिंदगी हमेशा हसीन लगती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इस खिड़की पर उदासी, शिकायतें या अतीत की यादों की धूल जम जाती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ कि हम अक्सर बाहर की दुनिया में कमियाँ ढूंढते हैं आशा, जबकि सच ये है कि जो चश्मा है ना वो हमारे मन पर लगा होता है। अगर मन की खिड़की से उम्मीद और पॉजिटिविटी की हवा हम अंदर आने देना, तो हर छोटी सी चीज़ हमें खुशियाँ दिखने लगती हैं। और मन जो है ना, उसको कहते हैं ना बहुरूपिया है, बहुत से उसके रूप होते हैं। कभी मन चंचल होता है तो कभी मन एकदम उदास हो जाता है।
1: न जाने कितने भेष बदलता है ये मन। मधु, जितने हमारे विचार चलते हैं ना, उतने ही हमारे मन के अलग-अलग रूप हैं। तो
0: बिल्कुल
1: आपको अपने विचारों पर ध्यान रखना है कि इन मन को कौन सा जामा पहनाना है। जो विचार आपने धारण कर लिया, मन उसी की ओर चल देता है। और जिंदगी वैसी नहीं है जैसी ये बाहर दिखती है, बल्कि जिंदगी वैसी है जैसी हम इसे अपने मन की खिड़की से देखते हैं। तो खिड़की बदलिए, यानी विचार बदलिए, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा।
0: बिल्कुल, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और यादों का हिसाब है जिंदगी। तो क्यों ना आज हम सब मिलकर अपने मन की ये जो खिड़की है ना, इसको थोड़ा सा साफ करें। सखियों, जो पुरानी बातें हमें तकलीफ देती है ना, उन्हें साफ कर दें, बाहर जाने दें और मन को थोड़ा हल्का कर लें।
1: हाँ, और एक बात और, जो लोग हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं, उन्हें इस खिड़की के रास्ते दिल में आने दे। आज किसी रूठे हुए को मना लें, किसी की मदद कर दें, या बस आईने में देखकर खुद को एक प्यारी सी स्माइल दे दें, तो आपका मन खुश हो जाएगा।
0: बिल्कुल, जब मन खुश होगा तो ये जो खिड़की है ना, ये खुल जाएगी। और मन की खिड़की को हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सी ठंडी बयार जो है वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाए।
1: और ये मन की मन रूपी जो पतंग है, वो आसमान में लहलहाती उड़ने लग जाए।

0: सखियों, इंसान की असली ताकत भी यही मन है। अगर मन मजबूत होता है ना, तो मुश्किल रास्ते भी बहुत आसान हो जाते हैं। और ऐसे मतलब बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई और उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़े। और एक उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा का। ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी इन्होंने मन से हार नहीं मानी और अपने कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी।
1: हाँ, ऐसी एक महिला और याद आ रही है मुझे आशा, जो सुधा चंद्रन, जो डांसर थी और उनका जो सपना था नृत्य करने का, क्लासिकल डांसर थी, लेकिन जो उनका एक हादसे में पैर उन्होंने गंवा दिया, जयपुर फुट के सहारे वो फिर से खड़ी हुई और इतनी अच्छी नृत्यांगना बनी, सफल नृत्यांगना बनी वो। और इतना ही नहीं, वो सीरियल्स और टीवी में भी मतलब काम करती हैं काफ़ी समय से। तो जो मन है ना, यदि थक जाए तो छोटी सी जो परेशानी होती है ना आशा, वो भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन मन को हारना नहीं होता, कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जीत और हार जो है ना, पहले हमारे मन में तय होती है। ज़िंदगी में कई बार सखियों ऐसा होता है कि सब कुछ खिलाफ लगता है, सारे रास्ते बंद दिखते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं। कभी-कभी तो आईने में दिखने वाला चेहरा जो है ना, वो भी अजनबी लगता है। लेकिन याद रखिए, हार कभी बाहर से नहीं आती, सबसे पहले हमारे मन में जन्म लेती है।
0: और जिस दिन इंसान खुद से कह देते हैं ना कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन उसके कदम रुक जाते हैं। लेकिन जिसने ठान लिया, जिसने टूट कर भी मुस्कुराना सीख लिया, आगे बढ़ना सीख लिया, अंधेरों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है।
1: एक छोटा सा बच्चा है ना, देखो, चलना सीखता है ना तो कितनी बार गिरता है वो, लेकिन जब भी वो गिरता है तो फिर उठता है, वो हारता नहीं है। और फिर देखो ना, एक दिन दौड़ने लगता है। तो हम बड़े होकर क्यों हार मान लेते हैं, हम अपनी किस्मत को क्यों मान लेते हैं, हम खुद सब प्रयास करें।
0: यानी सबसे हमको सीखना चाहिए, हम बड़े हैं तो क्या हमको
1: बिल्कुल
0: बच्चों से भी सीखना चाहिए। तो अगर मन मजबूत हो तो टूटी हुई उम्मीदें भी फिर से जुड़ जाती है, सूखी हुई शाखों पर भी नए पत्ते आ जाते हैं, और बंद दरवाजों के बीच कहीं ना कहीं एक खिड़की खुल जाती है जहां से बयार आती रहती है ठंडी ठंडी हवा।
1: कहते हैं ना आशा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।

0: सखियों, मन जो है ना वो भागता रहता है, और मन ही तो रिश्ते बनाता है। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये शब्द सुनते ही हमारे चेहरे के सामने बहुत से लोग आ जाते हैं। माँ का स्नेह, पिता का विश्वास, दोस्तों की मुस्कान और अपने किसी का साथ।
1: हाँ, लेकिन मधु, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, मन से जुड़े होते हैं? अगर मन साफ हो तो रिश्ते अपने आप खूबसूरत बन जाते हैं, वहाँ कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती। और अगर मन में दूरी आ जाए तो सबसे करीबी रिश्ता भी धीरे धीरे खामोश होने लग जाता है।
0: हाँ बिल्कुल आशा, कई बार क्या होता है कि रिश्तों को निभाने की हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने मन की बात उनसे कह नहीं पाते। एक दूरी रहती है, कहीं अहंकार रुक लेता है, और कभी ये डर होता है कि सामने वाला कहीं हमें गलत ना समझ ले।
1: तो बस यही जो रिश्तों की डोर होती है वो रिश्तों को कमज़ोर करने लगती है। तो सखियों, रिश्ते जो होते हैं कांच की तरह होते हैं। एक छोटी सी चोट, एक कड़वा शब्द या एक अनदेखी का पल, मतलब किसी को इग्नोर जब हम कर देते हैं तो दिल में ऐसी दरारें पड़ जाती है जिसे भरने में बहुत वक्त लग जाता है।
0: लेकिन एक सच ये भी है ना कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते जो हैं वो एहसासों से बन जाते हैं। किसी का बिना कहे हाल पूछ लेना, भीड़ में हमारा उदास चेहरा उसको दिखाई दे जाना, और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत भीड़ में होते हैं और अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा दिख जाता है, उस वक्त कितनी खुशी होती है ना।
1: उस वक्त तो हमारा दिन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब मुश्किल वक्त में हम किसी की मदद करते हैं ना, तो यही छोटी छोटी बातें किसी भी रिश्ते को गहरा बना देती है। और कभी कभी प्यार जताने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, अपनेपन की एक आवाज ही काफी होती है।
0: बिल्कुल, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें लोग साथ तो हैं लेकिन दिलों के बीच कुछ दूरियां आ रही हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर हम घंटों बातें कर लेते हैं लेकिन घर में बैठे लोगों से बतियाने का हमारे पास समय नहीं बचा है।
1: ये तो बिल्कुल सच है मधु, आज का जो परिवेश है, हम सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। और कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ एक कदम जो है आगे बढ़ाना पड़ता है, जो साथ में बैठा है।

0: हमारे, उसके साथ चाय की चुस्कियाँ लेना, उसके साथ गपशप करना, चाहे मोबाइल स्क्रीन पर हम कितना भी इन्वॉल्व हों, लेकिन पास में जो बैठा है उस इंसान से जब हम जुड़ते हैं तो उसका मज़ा बिल्कुल अलग होता है।
1: बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, जब हम सामने बैठते हैं तो पुरानी कोई बात होती है, उसका जो गीला शिकवा है ना, कुछ एक सॉरी या एक मुस्कान में, थोड़ी सी बात करने में हल हो जाता है। अगर रिश्तों में मन जुड़ा हुआ नहीं होना सके हो तो खामोशियां बातें नहीं करती, और मन जुड़ जाता है ना आशा, तो खामोशियां भी बोलने लगती हैं। कहते हैं ना कि आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं, और अगर मन दूर हो जाए तो हजारों शब्द भी मौन हो जाते हैं।
0: तो भाई हम तो अपने प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, चाहे आप कितने ही शौकीन हो, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, बिल्कुल हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनको महसूस कीजिए, उनके साथ हंसिए, खेलिए, बोलिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत वही लोग होते हैं जो हमारे मन को समझते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो हमारे परिवार के हैं, जो हमारे आसपास होते हैं।
1: और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तभी हमारे मन में लगन रहती है उनसे मिलने की बार बार।

0: सखियों, मन की जो लगन है ना, वो लगती है भावनाओं से। और ये जो भावनाएं हैं ना, ये एक ऐसा एहसास है जो हमारे मन में बसता है, भीतर की, हमारे जो भीतर एक मन की दुनिया है ना, ये शब्दों से, एहसासों से बात करती है। कुछ बातें हैं ना जो होठों तक आकर रुक जाती हैं, कुछ एहसास, कुछ दर्द आंखों में उतर आते हैं, और कुछ खुशियां होती है ना, वो बिना वजह ही लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ ऐसे अनकहे एहसास होते हैं जो हर दिल में बसे होते हैं, लेकिन उन्हें हम आशा बयां नहीं कर पाते।
1: और मतलब मन बड़ा अजीब होता है, ये हम सभी जानते हैं। कभी छोटी छोटी बात पर ही अपसेट हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है उस बात में अगर हम बाद में उस पर विचारते हैं। लेकिन कभी कभी बड़े दुखों को भी इंसान मुस्करा कर सह लेता है और मुस्करा कर छुपा लेता है।
0: बिल्कुल
1: और कई बार हम मैं ठीक हूँ कह तो देते हैं, लेकिन हमारे मन में इतना तूफान होता है, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं
0: हाँ,
1: पाते।
0: अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम फोन पर बात करते हैं अपने परिजनों से, तो पूछते हैं कि कैसे हो, तो हम कहते हैं ठीक है। भले ही हम ठीक नहीं होते, लेकिन हम छुपा जाते, क्योंकि जब दूर है तो हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। कभी किसी को ये भी सोचते हैं कि बुरा नहीं लग जाए, कभी सोचते हैं कि हमने अपना तकलीफ या दर्द बताया तो हम पर हंसेगा, तो हम अपने जो एहसास है ना, वो किसी कोने में छुपा देते हैं। हम बहुत बोलना चाहते हैं, लेकिन खामोशी ओढ़ लेते हैं।
1: लेकिन यही खामोशी, यही अनकही बातें, धीरे धीरे इन बातों का मन पर बोझ बढ़ने लगता है। और ज़िंदगी की भागदौड़ में हम भागते तो हैं, हम दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने मन को ही नहीं समझना चाहते हैं, अपने
0: बिल्कुल
1: मन को ही नहीं सुनना चाहते हैं, उसकी आवाज़ हम सुनना भूल जाते हैं। कभी किसी अपने की कमी, कभी टूटते रिश्तों की टीस, तो कभी बिना वजह की बेचैनी। ये सब ऐसी बातें हैं जो अंदर ही अंदर हमें खाती रहती है और जो हमें परेशान करती है।
0: हाँ, लेकिन सखियो, मन सिर्फ दर्द ही नहीं संभालता, उम्मीद भी जगाता है। किसी अपने का साथ, एक प्यारी सी मुस्कान, या दुख और परेशानी के समय में किसी का बिना बोले कह देना कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये छोटे छोटे से एहसास जो है ना, जिंदगी को रोशन करते हैं।
1: न जाने कितनी कहानियां छुपाए बैठा है मन अपने ही अंदर, और ये मन अपने आप से ये बातें करता है और फिर मन खुद को ही जवाब देता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए सखियों, जरूरी है कि हम अपने मन को समय दें, यानी कुछ देर अपने मन के साथ बिताएं, अपनों की बातें सुनें, महसूस करें, और कभी कभार एकांत में बैठकर खुद से भी बात करें,

0: मधु, हम सभी के अंदर एक कश्मकश हमेशा रहती है। एक तरफ तो हमारा एक चंचल मन है और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल लाइफ जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। एक तरफ ये हमारा चंचल मन है जो तितली की तरह उड़ना चाहता है, आसमान को छूना चाहता है, अपने सपनों को जीना चाहता है और बिना सोचे समझे उन सपनों के पीछे भागना चाहता है।
1: लेकिन जैसे ये मन उड़ान भरने के लिए पंख फैलाता है ना आशा, तो सामने क्या खड़ा होता है पता है? बदलता हुआ दौर, भागती हुई प्रैक्टिकल दुनिया जो कहती है कि ठहरो, पहले करियर देखो, बैंक बैलेंस बनाओ, और यदि ये सब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे।
0: और कितना अजीब है ना, अपना मन तो कहता है चलो आज सब कुछ छोड़ कर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना लेते हैं, अपनी कहीं घूमने निकल जाते हैं, पहाड़ों पर निकल जाते हैं, या फिर कोई अधूरी पेंटिंग पूरी करते हैं जो सालों से अधूरी है। मन उड़ना चाहता है आज़ाद परिंदे की तरह।
1: लेकिन ये जो बदलता हुआ दौर है वो उड़ने कहाँ देता है? यह है डिजिटल एज जहाँ चीज़ स्पीड और सक्सेस के पैमाने पर नापी जाती है, हमें उड़ने नहीं देती। हमें लगता है कि अगर हम जरा भी रुके ना तो इस रेस में कहीं पीछे छूट जाएंगे। हम नोटिफिकेशन, ईमेल्स और ईएमआई के पिंजरे में इस कदर कैद हैं कि हमारा जो चंचल मन है ना वो पिंजरे में कैद हो चुका है। हम जी नहीं रहे सखियों, हम बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं।
0: लेकिन मधु, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या इस बदलते दौर जो चल रहा है, क्या शर्तों पर जीना इतना ज़रूरी है कि हम अपने मन की करना ही भूल जाएं? माना कि पैर ज़मीन पर रखने हैं, जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, लेकिन इस मन के लिए, इस मन की बातों को ढील देना भी तो ज़रूरी है
1: बिल्कुल सही बात है।
0: ताकि अपनी पसंद के कोई काम कर पाएं। तो हफ्ते में एक दिन या एक घंटा ही सही, इस बदलते दौर की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़िए।

0: अपने मन को वो करने दीजिए जो ये चाहता है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो सारी चीज़ें आपके दायरे में हो, क्योंकि मन उड़ेगा नहीं तब तक जिंदगी में नए रंग रंग कैसे आएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और सखियो, आप क्या सोचते हैं कि चंचल मन है ना, वो कहीं उड़ना चाह रहा है यदि आपका, तो ये दौर आपको रोक रहा है, तो थोड़ा दिल की सुनिए। और फिलहाल आपके चंचल मन को एक छोटी सी उड़ान पर ले जाने के लिए बजाते हैं प्यारा सा गीत।

सखियों, मन जो है ना वो कई बार अकेलेपन का शिकार भी होता है। हम अपने मन में सब लोगों के साथ बहुत घिरे हुए होते हैं, लेकिन जो हमारा जो मन होता है ना उसमें हम अकेले होते हैं, भीड़ में भी अकेले होते हैं। और इस अकेलेपन की जो वजह है ना वो होती है कि हम अपने मन की बात जो है लोगों से कह नहीं पाते, और जो हमारे मन का दर्द

0: दर्द है वो किसी को दिखा नहीं पाते।
1: और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान अपने ही लोगों के बीच खुद को अनसुना अकेला महसूस करने लगता है। कभी किसी को वक्त ही नहीं मिलता, कोई मन की गहराई को समझ ही नहीं सकता, और फिर धीरे धीरे मन अपने ही भीतर से मटने लगता है।
0: आज की जो दुनिया है ना, इसमें रिश्ते बहुत हैं, लेकिन सुकून देने वाली बातें जो है वो कम हो गई हैं। मोबाइल में बहुत नंबर हैं आशा, लेकिन दिल खोलकर बात करने वाले जो इंसान है ना, वो मुश्किल से मिलते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन भारी होता है, लेकिन उस बात को सुनने वाला कोई नहीं होता।
1: और इसलिए वो सारा तूफान हम अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, और कभी कभी सोचते हैं कि इंसान इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कलाकार है। और इंसान तो है ही, और इंसान का मन उससे भी बड़ा बेहतरीन कलाकार है, क्योंकि वो
0: बिल्कुल
1: अंदर से इतना जख्मी होता है, इतने दर्द, इतनी शिकायतें, और न जाने कितनी टूटी हुई उम्मीदों को वो समेटे होता है, फिर भी चेहरे पर, इन होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजी रहती है।
0: हाँ, अंदर जो है ना एक समंदर उतर रहा होता है, समुंदर की जो लहरें नहीं होती हैं उठती, उस तरह से हमारा जो दिल है वो रो रहा होता है, और बाहर हम दुनिया के साथ हंसकर हाथ मिला रहे होते हैं। कितना कमाल का हुनर है ना।
1: और कभी कभी ये मन जो है ना छोटे बच्चे की तरह रोता है और कहता है काश कोई हाल पूछ ले हमारा, क्योंकि मन अकेलापन जो उसको ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर अंधेरी रात की तरह अकेलापन जो है ना, ये भी हमेशा नहीं रहता आशा। ज़रूरत है कि अपने मन की बात हम किसी से कह दें, खुद को थोड़ा वक्त दें, और ये समझें कि जो भावनाएं हैं ना वो मायने रखती हैं।
1: और मधु, इस जख्मी मन पर मुस्कुराहट का ये पर्दा डालना आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि हम हर बात किसी के आगे नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी बात बड़ी हंसी खुशी सुन तो लेते हैं, लेकिन वो इस मन के जो जख्म है ना, समय आने पर उस पर ही नमक छिड़कते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मरहम लगाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, जख्म पर जो नमक छिड़कने वाले हैं वो लोगों, और तमाशबीन जो होते हैं ना उनकी जो तादाद है वो आजकल बढ़ गई है। वो हर मोड़ पर खड़े मिलते हैं, जो आपकी तकलीफ तो सुन लेते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक बनाते हैं, मौका मिलते ही उस जख्म पर फिर से वार करते हैं। इसीलिए शायद अब जो लोग हैं वो मन खोल कर बात करना कम कर चुके हैं।
1: और इसलिए तो कहते हैं कि अपने जख्मों को छिपाकर मुस्कुराना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कोई तकलीफ हो है उसे खुदा के आगे या किसी बेहद खास भरोसेमंद इंसान के आगे ही रखिएगा, और जो सच में आपके आंसू पहुंचना जानता हो, बाकी दुनिया के लिए आपकी ये होठों पर मुस्कान आप जरूर पहन के रखिएगा, ताकि अपने जख्मों को अपनी ढाल बना सकें आप, अपनी कमजोरी नहीं।
0: सखियों एक बात और, कि ये तो हम अपने मन की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखे कि कोई सामने वाला है, आपके आसपास जो व्यक्ति है, वो चुप रहने लगा है, खामोशी ओढ़े हुए है, तो उसे समझने की आप भी कोशिश कीजिए कि कहीं उसका व्यवहार आपसे मदद तो नहीं मांग रहा। उसको समय दीजिए, उसकी आवाज़ सुनिए और उसकी बात को अपने तक रखिए, और उसको मन से बेहतरीन सलाह दीजिए।
1: और मधु, जब हम आसपास लोगों से नहीं मिल रहे होते या लोग हमसे नहीं मिल रहे होते, हम अकेलापन महसूस करते हैं, तो वहीं से एक तनाव का दौर शुरू होता है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन अकेलेपन और एकांत में बहुत फर्क है। एकांत
0: बिल्कुल
1: में जब मन अपने आप से बातें करता है और धीरे धीरे उस परमात्मा से जुड़ता है, तो वो एकांत का मजा लेता है घंटों घंटों तक।
0: हाँ, और ऐसा ही मन जोगी बनता है।
1: हाँ।

0: हम गाना सुनते हैं तो हमारे पैर ऑटोमेटिक थिरकने लगते हैं, वॉल्यूम हम थोड़ा सा तेज कर देते हैं, और मन के अंदर बहुत बढ़िया वाला हार्मोन जो है सिक्रीट होता है जो हमारी खुशी को बढ़ा देता है।
1: हाँ, तो हमारा जो मन है ना, उसी को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, लेकिन हम अक्सर उसको ही नजरअंदाज कर देते हैं। संगीत जो है वो हमारे मन का वो आईना है जो हमारी हर भावनाओं को बिना कुछ कहे पूरी दुनिया के सामने बयां कर देता है।
0: और संगीत, चाहे कोई अपने पसंद का सिंगर हो, है ना, चाहे सूफी अंदाज हो, चाहे आपके पसंद के कोई भी गाने हो, तो जब मन चिंताओं के भंवर में फंसा होता है तो एक अच्छा गाना या आपकी पसंद के सिंगर का गाना आपके दिमाग का डोपामाइन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज कर देता है।
1: संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, थके हुए मन की एक थेरेपी भी है, उसकी दवा है। ये बहुत ज़रूरी है कि सीधे शब्दों में भी हम कह देना, तो संगीत जो है वो मन का भोजन है।
0: बिल्कुल, और यही भोजन हमारे मन को तरोताजा रखता है, खुश रखता है, संतुलित रखता है। तो अच्छे मन के लिए संगीत बहुत जरूरी है, क्योंकि संगीत से हमारा अटूट रिश्ता है।
1: एक और बात है कि संगीत जो है वो हमें भीतर तक जोड़ता है, मन के भीतर उतरने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम अपने मन से बात करते हैं ना आशा, तो हमें बहुत सी चीज़ों का, समस्याओं का हल भी मिलता है। और कई बार हमारा मन कुछ बातें कहता भी है ना, जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन हमें पहले से ही पूर्वाभास करा देता है।
0: इंट्यूशन, मन के इंट्यूशन को कोई जो समझ लेता है, सीख लेता है, तो यानी कोई ना कोई अंदर हमारे मन के भीतर कोई हमें ट्यूशन दे रहा है, कोई समझा रहा है, कोई बात क्लिक करा रहा है, तो अगर उसकी बात हम सुन लेते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है।
1: तो मन की आवाज़ को सुनना भी जरूरी है सखी।

0: आज की भागती दौड़ती जिंदगी की अपन बात कर रहे थे आशा, तो आज क्या है कि हर किसी को सफलता चाहिए, सबको पैसा चाहिए, किसी को पहचान चाहिए, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ खो रही है ना, तो वो है मन की शांति।
1: और शांति देता है हमें संगीत। और जब कभी हम सोकर उठते हैं, बाहर देखते हैं, कभी मौसम बहुत खुशनुमा होता है, तो ऐसे ही बिना सोचे समझे हमारा जो हाथ है वो म्यूज़िक सिस्टम की तरफ चला जाता है, चाहे मोबाइल की तरफ चला जाता है, और एक पुराना गज़लनुमा गाना कभी हम बजा देते हैं। बस फिर क्या था, मन एकदम शांत और खुश हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, इस मन की शांति जो है ना, वो आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहर का जो शोर है ना, वो बहुत बढ़ गया है। हर समय हम जल्दबाजी में और चिंता में रहते हैं, और खुद को साबित करने की एक ऐसी दौड़ है ना, अंतहीन दौड़ कि पूछो ही मत, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। इसलिए हम जो है वो संगीत का यदि सहारा लें तो ज़्यादा बेहतर है।
1: और संगीत सुनने से मन एकदम शांत हो जाता है। मन और संगीत का रिश्ता आपस में बहुत गहरा है। सोचिए ना, हम जब खुश होते हैं तो कैसे कोई अच्छा सा

0: क्यों समय हो चला है कि सुहाने सफर को समेटने का, क्योंकि जो वक्त है ना उसकी सुई कभी किसी के लिए रुकती नहीं है।
1: बिल्कुल, आज हमने मन के उन कोनों को छुआ जहाँ कभी खुशी की धूप होती है तो कभी यादों की ठंडी छांव। ये मन भी बड़ा अजीब है ना, कभी एक पल में पूरी दुनिया घूम

0: आता है और कभी घर के एक शांत कोने में बैठकर सदियां बिता देता है।
1: हाँ, तभी तो किसी ने खूब कहा है कि इसलिए अपने छोटे से दिल और बड़े से मन का ख्याल रखिए, इसमें थोड़ी सी उम्मीद और ढेर सारी मोहब्बत हमेशा बचाए रखिए।
0: तो फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर इसी वक्त कुछ नई बातों और कुछ पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम।
1: और चलते चलते सखियों, आपको बता दें कि आज हमारी आवाज और मधुर गीतों को आप तक पहुंचाया कंसोल पर हमारे साथी कल्याण विश्नोई ने, और ट्रांसमीटर पर हमारे साथी रहे विक्रम सिंह भाटी और फारूक अहमद शेख, कंट्रोल रूम से हमारे साथ रहे राय सिंह राव, FM पर CL सोनी,
0: और पूरे मन से इस प्रोग्राम की परिकल्पना की सफलता चारण ने। तो अब अपनी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
1: मधु बनर्जी को
0: दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नारी वाटिका। हम आकाशवाणी के जोधपुर चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री

0: मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टलसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई

0: अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहां हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे

0: लेकिन वर्षावनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षावनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षावनों की। श्रोताओं, वर्षावन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है, पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इंसान की नहीं लगी। अरे
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बढ़िया ही रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला,

0: उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
0: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरा माँ,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
4: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरा माँ,
2: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?

0: मामा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है बहनों। चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हम सब तैयार हैं।
2: पेड़ नहीं कटने देंगे।
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
4: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
5: मिट्टी पानी और बयान।
1: मिट्टी पानी और बयान,
5: जिंदा रहने के आधार।
6: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
7: अरे क्या कर रहे हो?
8: मेरा मुंह के ताक रहे हो? अरे शुरू मारो
7: पेड़। अरे भाई कौन है? रुको, हम चिपक जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
7: अरे कहाँ
8: से? तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
0: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
7: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
8: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो,
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
6: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो,
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
6: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
6: एक साक्षात्कार में

0: गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियाँ मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
2: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: जी हाँ दोस्तों, इस धूप भरी दिन में एक ठंडी सी ठंडक लेकर और प्यारे प्यारे सी प्लेलिस्ट लेकर हम दो रेडियो बड़ी आपके साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूँ आपके आज के रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता, और मेरे साथ हैं
1: इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज की शाम वाकई बड़ी स्पेशल है। हर शाम की तरह मंगलवार का दिन है और यूथ अंताक्षरी का जो दिन है, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यूथ अंताक्षरी में आज के दिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस आवाज़ का नाम राहुल। आज प्रोग्राम में बहुत कुछ खास, बहुत सारी बातें और एक ख़ास बातचीत भी आपके लिए कुछ ही देर में हाजिर होगी। यूथ अंताक्षरी में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं,
0: बताएंगे क्यों ना पहले ये गाना सुन लिया
1: बिल्कुल
0: जाए।
1: सुनेंगे साहब, पहले गाना सुनेंगे फिर बताएंगे।

0: दोस्तों, आज के जो पहले हमारे कॉलर हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं और इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम रणवीर सिंह चारण गांव बिरई से।
0: रणवीर सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: पढ़ाई
0: ओके, पढ़ाई कर रहे हैं आप। अच्छा रणवीर सिंह जी, सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप में, झलक रहा है। तो सबसे पहले जो आप है, एक गाना सुना दीजिए अपनी पसंद का, बॉलीवुड होना चाहिए।
1: ठीक है।
0: सुनाइए।
1: संदेशी आते हैं हमें तड़पाते हो, चिट्ठी आती

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस गाने को गुनगुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूथ अंताक्षरी में पार्टिसिपेट किया। अगली बार फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, और अगर आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं।
1: जी हाँ, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 02912553300, दूसरे नंबर है 02912554300।
0: और हमारे साथ इस कड़ी में अगले कॉलर भी फिलहाल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? 02915253300, 02915253300 पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और अगले कॉलर भी फिलहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एनीवेज, म्यूजिकल ट्रैक एंजॉय करेंगे और कनेक्ट रहिए हमारे साथ। यूथ अंताक्षरी फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है, एंजॉय दिस ट्रैक।

0: जी हाँ, अगले कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
0: हेलो,
1: हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए जी, फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे, मज़दार से गाने को एंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं 02-91-25-53-300 पर, 02-91-25-54-300 पर। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: क्या
1: क्या बात
0: बात
1: है,
0: है
1: प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के बीच ही अगले लिसनर जुड़ चुके हैं। हेलो
0: जी।
1: हेलो,
0: नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो
1: हेलो,

वेलकम बैक एक बार फिर से। इस वक्त प्रोग्राम निर्माण को एंजॉय कर रहे हैं आप, हमारे कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो नमस्कार, हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?

0: क्या बात है, इतना प्यारा म्यूजिकल ट्रैक सुना हम सभी ने, और अभी चल रहा है अंताक्षरी का माहौल। राहुल, तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको करना है एक छोटा सा काम, वो है कि एक नंबर डायल करना। और वो नंबर क्या है राहुल?
1: वो नंबर है 02915253300, और दूसरे नंबर हैं 02915254300।
0: तो जो भी हमारे लिसनर हैं, जो सुन रहे हैं, हमें गाने का शौक रखते हैं, 30 साल की उम्र से कम है, तो फिर जल्दी से जल्दी हमसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हम बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
1: यूथ अंताक्षरी फिलहाल चल रहा है, और मज़ेदार से गाने, मज़ेदार सी बातें, और एक ख़ास बातचीत का जिक्र भी कुछ ही देर में अब से होने वाला है। तो हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। फिलहाल के लिए म्यूजिकल ट्रैक की दुनिया में बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं अगला म्यूजिकल ट्रैक।

बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के बीच हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। अगले कॉलर फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एनीवेज म्यूजिकल ट्रैक चलता रहेगा और कनेक्ट होने के लिए नंबर है 02915253000, 02915253000।

0: और जिन लोगों को ये जो अपनी एयर कंडीशन एसी को घर में 18 डिग्री पर रखने का शुरू रहना, वो भैया वो थोड़ा कम कर दो, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर आप अपनी एसी का रखोगे और आपका जो जेब का खर्चा है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम यमन को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त विनीता।
0: सरकार और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक आप जो हैं वो एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाना ही सही माना जाता है। बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहती है कि भैया आप जितना कम टेम्परेचर अपनी एसी का रखेंगे आपका जेब का खर्च उतना बढ़ता चला जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से आपकी जो है वो बिजली की बचत 6% तक बढ़ जाती है।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: फिलहाल ध्यान रखिए कि एवरेज टेम्परेचर होता है अपनी एसी का आप 24 डिग्री सेल्सियस तक
1: और
0: ही
1: वैसे
0: रखें।
1: इसमें बुराई भी नहीं है राहुल।
0: बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। फिलहाल प्रोग्राम यूवाणी चल रहा है, अंताक्षरी प्रोग्राम है और यूथ अंताक्षरी में हमारे नंबर हैं 02915253300, 02915253300 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमारे दोस्तों ने जिन्होंने भी 10वीं पास की है अभी अभी, और वो जो है सरकारी नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मौका है। जी हाँ, रेलवे में निकली है टेक्नीशियन के 6,500 पदों पर भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड RBI ने टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।
1: जी बिल्कुल, इसमें टेक्नीशियन Grade 1 और Grade 3 के लिए कुल 6,565 रिक्त पदों पर भर्ती होगी, और टेक्नीशियन Grade 1 सिग्नल के लिए BSc या डिप्लोमा होना आपके पास

अनिवार्य होगा, वो है, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जबकि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 10वीं पास के साथ साथ आपके पास ITI होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो 10वीं पास और जिन्होंने ITI कर रखी है, BCA डिप्लोमा किया हुआ है, तो इनके लिए भर्ती बड़ी ही शानदार होने वाली है। अगर इस भर्ती के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in पर जाकर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में बढ़ेंगे, आगे सुनेंगे मजेदार से गाने और एंजॉय दिस नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

0: वेलकम बैक यू अंताक्षरी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं लगातार और अगले कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनीता, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं सोमेश्वर से बात कर रही हूँ।
0: अरे वाह, कहाँ क्या करते हैं आप, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पढ़ती हूँ एट्थ क्लास में।
0: अच्छा, एट्थ क्लास में पढ़ रही हैं। अरे वाह, गाने का शौक है, गाना सुनते हैं आप?
1: हाँ।
0: अरे वाह, कौन सा फेवरेट सिंगर कौन है आपका?
1: है?
0: फेवरेट सिंगर कौन है आपका?
1: सिंगर कोई नहीं।
0: कोई नहीं?
1: नहीं।
0: चलिए जी, यूथ अंताक्षरी में आपका स्वागत है। आपको जो है वो अपने ही मनपसंद कोई भी एक गीत सुना दीजिए आप।
1: हाँ ठीक है, मैं
0: ठीक
1: शुरू
0: है?
1: कर रही हूँ।
0: हाँ सुनाइए बिल्कुल।
1: तू बात करिया ना मुझसे,
0: क्या बात है।
1: चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे ओ पगली, तुझ देखने में मेरा नाम न ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले सस्तो, अरी मैं भी नाचू, मैं भी नाचू रे गाऊं, सोने यार तू चलिया तेरी राह भूले, मैं भी नाचू रे गाऊं, सोने यार तू चलिया तेरी राह भूले।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत गाना आपने गाया। आपको पता है गाना किसने गाया है?
1: नहीं
0: नहीं पता? अरे वाह, कोई नहीं। हमारे साथ जो है वो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यूथ अंताक्षरी में। अगले कॉलर फिलहाल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो
2: हेलो
0: हेलो, क्या आप हमारे सुन पा रहे हैं?
2: हेलो
3: हेलो।
0: हाँ सर, क्या
2: जी,
0: नाम है आपका?
3: दीपक जी।
0: क्या नाम है सर?
3: दीपक जी।
0: क्या करते हैं आप?
3: हिंदी रैपर था।
0: अरे वाह, गाने का शौक कब से रखते हैं?
3: हैं?
0: गाने का शौक कब से रखते हैं? गाना गुनगुनाते हैं?
3: मैं आप वापिस बोल रहा हूँ, सही नहीं आ रहे।
0: हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
3: हेलो भैया।
0: हाँ जी,
3: आवाज सही नहीं आ रही, वापिस से फोन लगा रहा हूँ।
0: हाँ जी, लगाइए लगाइए।

0: श्रोताओं, आप सुनेंगे अंडर 15 एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त खुशी राणा से राहुल की बातचीत।
1: कुछ करने की जिद और हौसला इतना कि माउंट एवरेस्ट भी उसकी उपलब्धि का सम्मान करे। छोटे से शहर से निकलकर विदेश में अपने देश का परचम लहराया। वाकई ये कोई मामूली बात नहीं है और ऐसा करने वाली खुशी राणा जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाली खुशी राणा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। खुशी, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए।
2: मैं नाम खुशी है। मैं बॉक्सिंग मैंने 2020 में स्टार्ट की थी। मुझे पहली बार बॉक्सिंग मेरे भाई ने घर पे सिखाया था, 1-2 मारना। फिर मैं अपने भाई के साथ ग्राउंड गई। फिर मैंने वहाँ पे विनोद आचार्य सर, मेरे जो कोच है, उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे आगे के लिए बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया। और पापा है, जो इतना मिडिल क्लास फैमिली है, बट पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बॉक्सिंग को लेके। ऐसा नहीं था कि लड़की है नहीं होगा, ये पापा ने भी कहा नहीं तू करेगी बस।
1: क्या बात है, मतलब सबका सपोर्ट था और उसकी बदौलत उसका नतीजा आप और हम सब यानी पूरा देश देख रहा है। सबसे पहला सवाल बातचीत में शुरू करूंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि जब पूरे देश ने आपको पहचाना कि यार ये भारत की बेटी, राजस्थान की बेटी, इतना बड़ा मोमेंट है, आपको क्या फील हुआ?
2: टाइम मुझे एक ड्रीम सा लग रहा था कि ऐसा फील नहीं हुआ कि ये रियलिटी हो सकती है कभी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था इसलिए।
1: सपना सा लग रहा था।
2: सपना सा लग रहा था।
1: मेडल जब गले में आया, पहला चेहरा किसका विजुअलाइज हो रहा था?
2: पहला पेरेंट्स का।
1: पेरेंट्स का? उनके चेहरे पर किस लेवल की खुशी होगी, वो
2: हाँ।
1: क्या सोच रहे होंगे? वो उस वक्त आपके साथ थोड़ी थे पेरेंट्स,
2: नहीं
1: वो घर पे थे। आपके साथ कौन था?
2: हाँ, मेरे साथ ऐसे फैमिली से तो कोई नहीं था, ना कोच सर थे, क्योंकि हमें जो इंडियन टीम गई थी वो कोचेस थे हमारे साथ बॉक्सिंग की।
1: ओके, अब बॉक्सिंग में आने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली?
2: मेरे भाई से, महेंद्र राणा मेरा भाई है, उससे मिली थी मुझे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो कैसे शुरू हुआ सफर? स्कूलिंग आपकी चल रही है अभी?
2: हाँ।
1: और इस दौरान बॉक्सिंग से आप कनेक्ट कैसे हुए, कैसे जुड़े आप वहाँ से?
2: बॉक्सिंग मेरा बड़ा भाई है, वो करता है।
1: ठीक है,
2: तो पहले मैं स्कूल में भी गली में भी बहुत खेलती थी। तो ऐसे ही एक दिन, मैं सैटरडे था, मैंने कहा चली जाती हूँ ग्राउंड। तो मैं एक पहले पहले दिन गई, बट मुझे अच्छा लगा जाके। तो फिर मैंने कहा कि मैं भी बॉक्सिंग करूँगी।
1: कब की बात है ये?
2: ये लॉकडाउन खुलने के बाद की बात है,
1: अच्छा।
2: तब से मैंने।
1: लोग ना बॉक्सिंग को ऐसे मानते हैं कि ये ताकत का गेम है, इसमें पावर चाहिए। असली बॉक्सिंग क्या है आपके नजरिए से, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं?
2: ताकतवर है, बट ज्यादा स्मार्ट वर्क। अब ज्यादा स्मार्ट हो गया है
1: मॉडर्न
2: बॉक्सिंग,
1: बॉक्सिंग।
2: मॉडर्न बॉक्सिंग हो गई है।
1: सही सही सही। पहली बार जब रिंग में उतरे थे, क्या फीलिंग थी वो? क्या डर था कुछ भी, यार मेरे कहीं पंच पड़ गया तो क्या
2: पहली
1: होगा
2: बार
1: यार?
2: तो बहुत डर था, क्या पता मैं हार गई तो।
1: हार का डर था।
2: हार का डर था।
1: पहला पंच याद है?
2: एक बार याद है, जब मैं रही लड़के के साथ कराई थी, तो उसने मुझे स्लिप राइट मारा था, तब एक बार पूरा मुंह हिल गया था मेरा यही बारे में
1: एक ही बार पूरा मुंह गिला दिया उसने फिर आपको गुस्सा नहीं आया, अब मैं पूरा अच्छे से ट्रेनिंग करूंगी
2: गुस्सा
1: और उसको
2: आया
1: पंच
2: ऐसा था
1: लगाऊंगी,
2: कि हाँ मारूंगी इसको।
1: इसको मारूंगी अब
2: हाँ।
1: क्या बात है। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान इस बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल चीज क्या है?
2: मुश्किल बस मुझे दौड़ना ही पसंद नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा लगता
1: अच्छा, बॉक्सिंग में सबसे पहले अपने शरीर को प्रिपेयर करना पड़ता है, बॉडी को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए रनिंग करनी पड़ती है पहले।
2: हाँ, वार्म
1: बॉक्सिंग
2: अप
1: करने
2: करना
1: से पहले
2: पड़ेगा।
1: वार्म अप के तौर पर आपको रनिंग करनी पड़ती है और वो थोड़ा आपको
2: नहीं,
1: मुश्किल लगता
2: ऐसे
1: है?
2: वार्म अप मुश्किल नहीं लगता। जैसे अगर हमारे ट्रेनिंग के बीच में रनिंग होती है, स्प्रिंट वगैरह, वो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, बट जब करने लगती हूँ तब मजा आता है उसमें, जब खुद का जब बेस्ट दे रही होती हूँ तब।
1: अब बात करते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स भी होंगे बहुत सारे,
2: हाँ।
1: ठीक है, और वो जब आउटसाइड बहुत सारी पार्टीज करते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं, लेकिन आप जो हैं ऑब्वियस है इस लेवल पर पहुंची हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ती होगी। अब फ्रेंड्स आपकी पार्टी कर रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस में बिजी हैं, तो वो मिसिंग आउट नहीं फील होता यार मैं इन बच्चों से थोड़ा अलग हूँ, मतलब वो क्या फीलिंग है?
2: होता है कभी कभी, बहुत फील होता है कि बोरिंग स्पोर्ट्स की एक थोड़ी बोरिंग सी लाइफ है, रोज ट्रेनिंग रेस्ट ट्रेनिंग रेस्ट। बट फिर जब मेडल आता है तो वो अलग ही खुशी होती है कि अब पार्टी करूंगी
1: उन सबसे बड़ी पार्टी
2: बड़ी
1: करेंगे
2: पार्टी करूंगी।
1: क्या बात है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बॉक्सिंग और पढ़ाई कैसे बैलेंस होता है, ये कैसे?
2: बैलेंस।

0: तो नहीं होता, लेकिन ठीक है मैं ट्रेनिंग करती हूँ और पढ़ाई पूरे दिन में ऐसे तो रेगुलरली तो नहीं पढ़ती, लेकिन एग्जाम टाइम पढ़ती हूँ ऐसे टाइम कम मिलता, बट दिन में 1 घंटा पढ़ लेती हूँ बस।
1: किसी भी चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारी, हर चीज़ को टाइम लगता है। इस फेज़ में आपको कभी ऐसा लगा यार अब नहीं हो पाएगा, इतनी प्रैक्टिस कर ली अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या चाहिए, और ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट आया कभी?
0: ऐसा मोमेंट आया नहीं, क्योंकि मैंने खेलना ही लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग, मतलब जब मेरी एज हुई थी तब एक ऐसा मोमेंट था कि मैं जीती हुई बाउट भी हार गई थी, तो मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि तो उस टाइम मेरे अंदर गुस्सा था, मतलब ऐसा नहीं था कि अब नहीं हो पाएगा, मतलब मैंने ऐसा था सोचा कि इस साल नहीं तो अगले साल तो पक्का करूंगी, तो मैंने इस साल किया।
1: एशियन चैंपियनशिप में जब आपने भारत की जर्सी वियर की, वो प्राउड मोमेंट कैसा था?
0: उसका बहुत वेट था, बहुत टाइम से जो एक वो ड्रीम होता है प्लेयर का इंडियन जर्सी पहनने के इंडिया की, बहुत अच्छा मोमेंट था उसको, मैं अभी तक कभी भूल नहीं सकती उसको।
1: एक आप जो हैं अपने रिंग में अपने देश में उतरते हैं, वहाँ अपने देशवासियों के साथ ही आप खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक जब आप विदेश में जाकर वहाँ आप बॉक्सिंग रिंग में उतरे, वो प्रेशर कैसा था?
0: प्रेशर नहीं, मेरा पहला एशियन था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी पहली फाइट की, कि मुझे इंडिया किट पहनना है, पीछे मेरा नाम लिख रखा है, मुझे जाना है रिंग में, बहुत एक्साइटमेंट थी, वो डर नहीं था बिल्कुल भी, ना कुछ प्रेशर था।
1: इस पूरी चैंपियनशिप में सबसे टफ मुकाबला आपका किसके साथ रहा?
0: टफ तो नहीं कह सकती, लेकिन नॉर्मली उज्बेकिस्तान के साथ था मेरा, जहाँ जिस जिस बाउट में मैं लॉस हो गई थी, उस बाउट
1: तो उससे आपने क्या कुछ सीखा, आपने वहाँ
0: सीखा मैंने उस बाउट से।
1: क्या सीखा, क्या मोमेंट्स आपने वो वहाँ पे लिखे हैं, आप क्या ये इसने यही चीज़ की है, इससे मैं पीछे हो गई थोड़ी सी, मुझे अब इस गलती को सुधारना है?
0: मैंने पंच मार के, जैसे बॉक्सिंग में होता है पंच मार के, मैंने अपने माइंड का यूज नहीं किया उस फाइट के अंदर।
1: मैच से पहले आपका माइंडसेट क्या होता है, क्या सोचते
0: मैच
1: हो?
0: से पहले ऐसे मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिंग के अंदर जाके ही सोचती हूँ जो भी कुछ करना है, बट ऐसा होता है सोचती हूँ कि हाँ जीत के तो आना है।
1: देखो कोई भी स्पोर्ट्स होता है ना, तो हर प्लेयर की एक आदत होती है, एक हैबिट होती है, कोई लकी चार्म होता है किसी का, किसी का कोई लकी रिचुअल होता है। आप क्या करते थे मैच से पहले, आपकी कोई ऐसी कोई ऐसा कुछ होता था यार, ऐसे क्या क्या होता था रिंग में उतरने से पहले, कोई लकी रिचुअल या फिर कोई ऐसी हैबिट?
0: हाँ मेरे दाता श्री है, उनका नाम लेके जाती हूँ हमेशा बस।
1: मेडल जीतने के बाद सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा आपको?
0: इमोशनल की ऐसा था कि गोल्ड नहीं आया था उसका था बहुत।
1: जब विदेश में आप परफॉर्म करते हो, रिंग में उतरते हो, ऐसे में जब नेशनल एंथम कानों में आता है, क्या महसूस होता
0: वो फीलिंग बहुत मैं बता नहीं सकती
1: है? मतलब अपने देश के लिए वहाँ उतरना, रिप्रेजेंट करना, वो अपने आप में एक अलग फीलिंग है, वो बयां ही नहीं किए जा सकते।
0: बहुत
1: एक बॉक्सर के लिए मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है?
0: ज़्यादा, क्योंकि आप फिजिकली प्रिपेयर होगे, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे रिंग के अंदर। आपको मेंटली जितना फिजिकली प्रिपेयर उतना ही, उससे ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है।
1: हम जब किसी भी चीज़ से हारते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपने हार से क्या सीखा अभी तक?
0: मैंने सीखा कि जो भी मैं भी थोड़ा मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं थी, तो मैंने उस पे मैंने अपनी गलतियाँ, बहुत सी गलतियाँ भी देखी और सोचा है कि नेक्स्ट टाइम वो गलती वापस कभी नहीं होगी, और मैंने अपनी हार से बहुत कुछ सीखा है कि मेंटली प्रिपेयर रहना, किस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना।
1: देखो आजकल की जो लड़कियां हैं, अगर वो इस खेल में आना चाहती हैं, बॉक्सिंग शुरू करना चाहती, खेलना चाहती हैं, देश के लिए खेलना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ क्या बताना चाहेंगी आप?
0: चाहती हूँ कि लड़कियाँ थोड़ा घर से बाहर निकले, वैसे अब तो जनरेशन चेंज हो गई है, सब भी खेलती है, चाहती हूँ कि और अच्छा वो करे, मेडल लेके आए, भारत का नाम और ऊपर करे वो।
1: उन पेरेंट्स को या बोलेंगी उन लड़कियों के पेरेंट्स को?
0: उन्हें बोलना चाहूँगी कि उन्हें ट्रेनिंग कराए, उन्हें सपोर्ट करे, मेन सपोर्ट होता है, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो कुछ भी कर सकते हो आप।
1: आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना?
0: मेरा सपना ओलंपिक मेडल और वर्ल्ड चैंपियन बनना है, पहला तो वर्ल्ड चैंपियन है।
1: ये सपना कब डिसाइड हुआ?
0: जब मैं बॉक्सिंग में मतलब आई थी तब ओलंपिक का नहीं था, लेकिन ऐसा था कि एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वर्ल्ड चैंपियन का बेल्ट लेना है, इसलिए
1: ओलंपिक का कब डिसाइड हुआ?
0: ओलंपिक का तो है ही, बॉक्सिंग में आते ही ऐसा था अब ओलंपिक तो खेलना ही है
1: सबके ना अपने अपने रोल मॉडल होते हैं, आपका रोल मॉडल?
0: बॉक्सिंग में फ्लॉड में।

0: क्या बात है, अगर वो इस टॉक को सुन रहे हैं, बातचीत को सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी?
1: बात करें।
0: क्या उनसे, उनको कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे उनको?
1: हाँ, उनके गेम को मैं देख के बहुत इंस्पायर हुई, उनसे बहुत कुछ, उनको देख के मेरा भाई मुझे सिखाता भी है कुछ कुछ चीज़ें उसमें से, रील या उनकी यूट्यूब पे वीडियो फाइट की देख के।
0: रिंग के अंदर तो खुशी मतलब एक अट्रैक्टिव गेम में होती है, रिंग के बाहर की खुशी क्या है?
1: मस्त
0: मस्त। बॉक्सिंग के अलावा और कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं आप?
1: स्विमिंग।
0: स्विमिंग आती है आपको? कब
1: हाँ,
0: सीखी है आपने?
1: स्कूल में सीखी थी।
0: स्कूल में सीखी थी। अरे वाह। और ऐसा खाना मतलब एक प्लेयर के लिए ना एक बहुत फिक्स डाइट होती है, मतलब आप भी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, ऐसी फिक्स डाइट होती है कि भैया यार मुझे ये खाना है, चीट मिल के आपके लिए।
1: वॉफल।
0: वफ़ल, वफ़ल खाना अच्छा लगता है, कभी कभी खा लेते हो
1: हाँ,
0: है ना?
1: सैटरडे संडे
0: सैटरडे संडे।
1: जब कंपटीशन नहीं हो तब।
0: अच्छा, मम्मी के हाथ की फेवरेट डिश?
1: मम्मी याद की भिंडी की सब्जी।
0: अरे वाह यार, भिंडी की कुरकुरी, भिंडी की सब्जी, क्या बात है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, अगर बॉक्सर नहीं होती आप तो क्या होती?
1: बॉक्सर नहीं होती तो कुछ सोचा ही नहीं था, जब बड़ी हुई तभी
0: के
1: बॉक्सिंग डाल दिया।
0: बड़ा होने ही नहीं थे, उससे पहले बॉक्सिंग में आ गई। ओके खुशी, प्रोग्राम यूवान इस वक्त चल रहा है और हमारे साथ अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाली खुशी हमारे साथ है और बातचीत चल रही है। खुशी, एक रैपिड फायर होगा छोटा सा, आपको इंस्टेंट जवाब देना है, और रैपिड फायर कुछ ऐसा है कि चाय या फिर कॉफ़ी,
1: कॉफी।
0: अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग या फिर इवनिंग वाली ट्रेनिंग,
1: अर्ली मॉर्निंग।
0: मेडल या वेकेशन,
1: मेडल।
0: पावर पंच या फिर स्मार्ट पंच,
1: स्मार्ट पंच।
0: मोबाइल या फिर सोना।
1: सोना।
0: सोना। सॉरी। फेवरेट बॉक्सर,
1: फ्लॉड में विदर।
0: फेवरेट एक्टर,
1: फेवरेट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा।
0: फेवरेट प्लेस,
1: रिंग, बॉक्सिंग रिंग अच्छी लगती है।
0: सपना क्या है?
1: वर्ल्ड चैंपियन।
0: क्या बात है। प्रोग्राम यमुनी को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं और खुशी हमारे साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी लिसनर आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि भाई जो बॉक्सिंग में आना चाहता है वो किस तरह से आ सकता है?
1: आप बॉक्सिंग में आओ, सीखो पहले, बट हर चीज़ में समय और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको आगे बढ़ना है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि खेले, सब अच्छा मेडल लाए, परफॉर्म करे, भारत के लिए मेडल लाके दे वो।
0: और ये जो चैंपियनशिप है, चाहे कैसी हो, बॉक्सिंग हो या और भी दूसरे फील्ड में, ये आपको सरकारी नौकरी लगने में कितनी क्या कुछ सहायक है, इस बारे में आपको क्या बताएगा और आप क्या बताना चाहेंगी?
1: बहुत है, क्योंकि राजस्थान सरकार तो बहुत देती है अब तो, बहुत सपोर्ट भी करती है, नेशनल मेडल पे जॉब देती है वो, और भी बहुत सारी जॉब मिलती है नेशनल मेडल्स पे।
0: आपको सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई इस दौरान, इस पूरी जर्नी में, चैंपियनशिप के दौरान मानिए या प्रैक्टिस के दौरान लगाई जाए तो?
1: हम खेलने गए, उनका टिकट्स वगैरह, हम वहाँ पे रहे, सब कुछ गवर्नमेंट ने किया। वहाँ से वापस आना, घर तक के टिकट वगैरह सब, मैं वहाँ पे रहे तो इंडियन फूड तो मिलता नहीं है अच्छा, तब भी उन्होंने अवेलेबल करवाया।
0: वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, आप जब विदेश पहुँचे तो क्या कुछ अलग आपने महसूस किया वहाँ का एक्सपीरियंस, वो कोई किस्सा ऐसा कुछ, अरे यार ये भी हो गया, ऐसा कुछ अनोखा किसानों की बात कोई वहाँ की,
1: ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब थोड़ा इंडिया जैसा ही था वो, कुछ
0: इंडिया
1: ऐसा
0: जैसे था, कुछ
1: नहीं,
0: ज़्यादा डिफरेंस
1: ऐसा
0: नहीं था?
1: कुछ डिफरेंस नहीं।
0: और लैंग्वेज को लेकर कोई इशू था
1: हाँ,
0: कैसा, क्या कुछ ऐसा कोई
1: वहाँ पे
0: मोमेंट?
1: रशियन लैंग्वेज है ना, इंग्लिश भी बहुत कम आती है उनको, बहुत कम, तो बहुत इश्यू था लैंग्वेज का तो।
0: तो कोई भी चीज़ आपको बतानी होती थी, होटल मैनेजमेंट की बात हो या फिर खाने को कुछ हो, तो फिर आप कैसे आए, रीच करते थे लोगों को?
1: मोबाइल से ट्रांसलेट करके।
0: अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे श्रोताओं को इतनी सही और सटीक जानकारी प्रदान करी, और सबसे लास्ट में फिर से आपको एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और आपके जो सपने अभी आपने डिसाइड करें वो बिल्कुल ज़रूर पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी अंडर 15 एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त खुशी राणा से राहुल की बातचीत। इस बातचीत की प्रस्तुति और संयोजन राजेश लामरोड द्वारा किया गया।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं युववाणी और हम दो रेडियो बडीज जो हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज है अंताक्षरी का माहौल और हम कर रहे हैं आपके कॉल्स का वेट। फिलहाल सुनते हैं राहुल की कुछ बातें।
1: जी बिल्कुल, युवाणी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है तो क्रिकेट की बात ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है
0: बिल्कुल
1: साहब। और फिलहाल चल रहा है इंडिया का त्यौहार, इंडियन प्रीमियर लीग 2026, जो कि 28 मार्च को शुरू हुआ था और 31 मई को ख़त्म होने वाला है। लेकिन इस बीच क्या पॉइंट टेबल्स के हालचाल हैं बता देते हैं आपको। आपको पता ही होगा आरसीबी ने तो सबसे पहले क्वालिफाई कर ही लिया था, उसके बाद जीटी यानी गुजरात टाइटंस और एसआरएच भी जो है अब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब जद

जैद है, एक टीम का, अब वो एक टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ में प्रवेश करेगी, उसमें नाम शामिल है पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के साथ साथ केकेआर भी फिलहाल रेस में तो बनी हुई है। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कौन बाजी मारता है, कौन प्लेऑफ में शामिल होता है। और बात करें एमआई और एलएसजी की, तो वो तो एलिमिनेट हो चुकी हैं, पॉइंट टेबल्स के हाल है। और फिलहाल करंट अपडेट क्रिकेट को लेकर ये आ रही है कि भाई जून में होने वाली है अफगानिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज और ओडीआई मैचेस, तो इसमें इंडिया की जो टेस्ट टीम है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है अफगानिस्तान टूर के लिए। शुभमन गिल टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे और ओपनिंग साझेदारी में शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल आ सकते हैं, केएल राहुल वाइस कप्तान बनेंगे और साई सुदर्शन को फिर से मौका मिल रहा है। विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल का नाम शामिल है। देव पडिकल भी नाम देख रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर है स्पिन के तौर पर। एक और स्पिनर कुलदीप यादव का भी नाम शामिल है। मोहम्मद सिराज पेस लेकर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। मानव सुथार का नाम सामने आ रहा है, गुरनूर ब्रार भी शामिल है, हर्ष दुबे का नाम दिख रहा है। और बात करें ओडीआई टीम की, तो सब लोगों को इंतज़ार रहता है ना कि यार ये रोकू का मुकाबला हमें कब देखने को मिलेगा, तो जून में मिलेगा आपको अफगानिस्तान टूर पर। ओडीआई टीम में शुभमन गिल के साथ रोहित मैन शर्मा जी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और एज यूजुअल ओडीआई टीम में फर्स्ट डाउन विराट कोहली का नाम तो भैया रन मशीन कोहली है, उसके साथ दिखेंगे आपको। और मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, ये दो नाम विकेट कीपर के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या का नाम शामिल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर स्पिनर, कुलदीप यादव, दोनों सेम नाम वापस आपको दिखेंगे। और पीस की बात करें तो अर्शदीप सिंह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रिंस यादव का नाम सामने आया है। और इन्होंने वाकई इस आईपीएल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली मतलब परफॉर्म किया है और बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। गुरनूर ब्रार का नाम शामिल है और लास्ट नाम हर्ष दुबे का सामने आता है। तो ये थी स्क्वाड इंडिया की टेस्ट और ओडीआई की। फिलहाल युवाणी प्रोग्राम बढ़ते हैं आगे, मज़ेदार से गाने एंजॉय करेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, आईटीआर भरने से पहले तैयार रखनी चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट जो कि ज़रूरी हैं, जानते हैं ना?
1: जी बिल्कुल, प्रोग्राम मॉर्निंग को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप। और फिलहाल जानकारी बता देते हैं आपको भी, आईटीआर जो पहली बार भर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर ये जानकारी है क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे। उन्हें आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सभी आईटीआर फॉर्म जो हैं वो जारी कर दिए हैं। टैक्स फाइलिंग भरने से पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवेश जहां आपने किया है उसका एक प्रूफ होना चाहिए, कैपिटल गेन स्टेटमेंट AIS फॉर्म 26AS और फॉर्म नंबर 16, रेंट रसीद और HRA रिकॉर्ड्स आप अपने पास रखिए। जितनी भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए, जितने भी आपको IDs बताई गई है, जितने भी आपको फॉर्म बताए गए हैं, वो आपको अपने पास रखने होंगे सुरक्षित तरीके से, तभी आप ITR अपना इजीली फिलअप कर पाएंगे। व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए ITR जो भरने की लास्ट यानी अंतिम तारीख है वो रखी गई है 31 जुलाई 2026, यानी 31 जुलाई 2026 तक आप अपने जो है वो ITR फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भरने जा रहे हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने बताए, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, AIS फॉर्म है, 26AS है, फॉर्म नंबर 16 है, ऐसी कुछ चीज़ें आपको रखना आपके पास अनिवार्य होगा।

0: तो टाइम हो गया है हमें जो है आपसे विदा लेने का, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ही प्यारी सी शाम में हम आपसे मिलेंगे और ऐसी ही प्लेलिस्ट लेके आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हुए थे, मैं विनीता और मेरे साथ हैं
1: इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ खास, एक खास बातचीत का जिक्र हुआ, एशियन चैंपियनशिप 2026।

में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया खुशी राणा से, कुछ खास बातें उनकी एक्सपीरियंसेस हमने जाने। आज के प्रोग्राम आपका युवाणी यहीं तक का था। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। आज के प्रोग्राम का संयोजन और प्रस्तुति रही राजेश लामरोड, कंसोल पे हमारे साथ स्नेह। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
3: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहाँ से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समय

समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या पहली अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,000

आज शाम 7 बजे सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, और 7:30 का वक्त रहेगा सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम का।

कुछ फिल्मी नगमों का आनंद लीजिएगा आज रात 8 बजे और रात 9:30 पर। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात 9:15 पर और मनचाहे गीत, श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 10 बजे से।

ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। और आइए अब सुनते हैं हमारी कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका भी प्रसारण समय।

कल सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुनिएगा कल सुबह 6:15 पर। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 7:00।

लोक संगीत का आनंद लीजिएगा कल सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे। सुगम संगीत सुनिएगा कल सुबह 10:30 पर और रात 12:30 पर। कृषि जगत का वक्त रहेगा कल दोपहर 1:05 पर और महिलाएं अपना कार्यक्रम गणगौर सुन सकती हैं कल दोपहर 1:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। युवा श्रोता अपनी पसंद का कार्यक्रम युवाणी सुन सकते हैं हमेशा की तरह कल शाम भी 5 बजे। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं चौपाल कल शाम 7 बजे और 7:30 का वक्त रहेगा सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम का।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, इसे हम रिले करेंगे। साहित्य सुधा सुनिएगा कल रात 9:15 पर और शास्त्रीय संगीत सुनिएगा कल रात 10 बजे से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीयोर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्तलेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम् असाध्य रोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट शुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमति प्रदत्ता। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। तृतीयं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनम् अद्य नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्येतेषां समकक्षिभिः सह अस्मिन् शिखर सम्मेलने भागं स्वीकृतम्। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे डेनमार्क देशस्य कोपेनहेगन नगरे आयोजितस्य पूर्व शिखर सम्मेलनानन्तरं भारत नॉर्डिक देशानां मध्ये क्षेत्रीय सहकारं सुदृढीकरणम् अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यमस्ति। तन्त्रज्ञानं नवान्वेषणं च सुस्थिरता पुनर्नवीकरणीयोर्जा डिजिटलीकरणं च अस्य सम्मेलनस्य प्रमुखानि क्षेत्राणि सन्ति। व्यापार आर्थिक सहभागित्व सन्धिना TEPA इत्यनेन सह अधुना प्रवृत्तेन शिखर सम्मेलनस्य भारत नॉर्डिक क्षेत्राणां मध्ये व्यापार निवेश संबंधाः अपि सुदृढाः भविष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। नॉर्डिक समूहेन सह भारतस्य द्वैपाक्षिक व्यापारः सम्प्रति प्रायः 21 बिलियन डॉलर मितमस्ति। अनेन शिखर सम्मेलनेन भारत नॉर्डिक देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सहकारस्य विस्तारः भविष्यति तथा च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चायाः अवसरः प्राप्यते इत्यपि अपेक्षा अस्ति। शिखर सम्मेलनात् प्राक् पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी आइसलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा, फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा, डेनमार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणा च सह द्वैपाक्षिक मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन देशानां भ्रमणं समाप्य ह्यः नॉर्वे देशं सम्प्राप्तवान्। गतसायं सः क्राउन प्रिंस हकोन तथा नॉर्वे देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहर स्टोन इत्युभाभ्यां सह भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। वाणिज्य अनुसंधान समुदायं संबोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी व्यापार आर्थिक सहभागित्व सन्धेः प्रभावात् परं द्वैपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अधोरेखितवान् यत् उभयोः पक्षयोः हितधारकाः 100 बिलियन US डॉलर इत्यस्य निवेशलक्ष्यं साधयितुं प्रयत्नान् कुर्युः। परिणामतः भारते 10 लक्षाणि यावत् वृत्त्यावसराणां सृजनं च करणीयम्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः पञ्चमान्तिमे चरणे च अद्य इटली देशं गमिष्यति। भारत स्वीडन देशौ वैश्विक अनिश्चिततायाः क्षणे सहकारः सहभागी समृद्धेः सुस्थिरस्य भविष्यस्य च मार्गं निर्धारणाय अवधानं दत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन च लिखिते लेखे वैश्विक अनिश्चिततायाः ऊर्जा

0: शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रे सुसहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायामद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
2: मुख्य समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने से अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को देश भर में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शी नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण देश के खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश अनुकूल वातावरण से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि रक्षा, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता राजस्थान में है। उन्होंने खनन से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया, जिससे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाड़मेर और बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दोहन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण से राज्य में चिन्हित साइट्स की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि इस भूमि का उपयोग अन्य कामों में नहीं किया जा सके। बैठक में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और राज्यस्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य के सभी टर्मिनल, डिपो और रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, घबराकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करने और ईंधन की उपलब्धता के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आज झुंझुनू प्रवास के दौरान लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
3: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती हैं और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में, तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने कितने कपड़े काफी

0: हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था, लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गए। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है, और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया, और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को।
1: इस बीच आज सवाई माधोपुर जिले में 11 पेट्रोल पंप्स और मापतौल में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आज उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर की आपूर्ति पर 30 मिलीमीटर पेट्रोल कम देना पाया गया, जिसके बाद संबंधित पंप के नोजल सीज कर दिए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं और 4,500 रूपये का जुर्माना भी वसूला है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण और कूटनीतिक संदेश तथा आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया। सेना प्रमुख ने यह बात नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत को शांति सुनिश्चित करने, विकास की गति को तेज करने और वैश्विक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जा रहे हैं। आज जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई परिवहन सेवाओं और बसों की खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार करने का फैसला किया गया। बेड़े में अगस्त माह तक 144 ब्लू लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय और पार्किंग सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और रेल संरक्षा मापदंडों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कोटा के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सौर ऊर्जा आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की इस पहल से घने जंगलों में स्थित प्राकृतिक आवास और कृत्रिम जल स्रोतों पर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा

0: सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में यह प्रणाली बेहतर कारगर साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से वन्य जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक डेटा जुटाने और उनकी टेरिटरी की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। और अब मौसम। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग में भीषण लू का प्रकोप जारी है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की
0: तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे हालिया खबरों की, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों की, ग्राम रथ अभियान की और भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपायों की। चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले बात क्षेत्र की प्रमुख फसल के बारे में। चित्तौड़गढ़ देश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिलों में शामिल है। यहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की ओर से जारी विशेष लाइसेंसों के जरिए सीमित और वैध तरीके से अफीम खेती की जाती है। हर साल किसानों की ओर से उत्पादित गुणवत्ता के आधार पर सरकारी खरीद और तुलाई केंद्र बनाए जाते हैं। खासतौर पर यहां दो तरीकों से अफीम पैदा की जाती है, गम और CPS पद्धति। गम पद्धति में पौधों में चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला और सुखाया जाता है। वहीं सेंट्रलाइज्ड पॉपी स्ट्रॉ CPS पद्धति में बिना चीरा लगाए सीधे डोडो की तुलाई की जाती है। हाल ही में जिले में अफीम तुलाई प्रक्रिया पूरी हुई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 खंडों के 756 गांवों के करीब 16,500 किसानों से अफीम खरीदी। इनसे लगभग 1,35,000 किलो अफीम खरीदी गई। इसके लिए पहले और दूसरे खंड के किसानों को लगभग 15,67,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं तीसरे खंड के करीब 1,000

0: काश्तकारों को 5,61,00,000 रुपए का भुगतान हुआ। सीपीएस पद्धति के तहत 684 गांवों के 4,800 किसानों को 5,59,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने पीने के पानी की समुचित आपूर्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बंद पड़े आरओ की जल्द मरम्मत करवाने, हैंडपंपों के पास सोखता खड्डे बनवाने और जल संरक्षण के कामों में तेजी लाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के समय लू और तापघात की आशंका रहती है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणियों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाए और इस मुहिम में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन दिनों देशभर में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसे जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के 158 आदिवासी बहुल गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने बेगू के जोगणिया माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री बिरला ने राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है, साथ ही एकता और भाईचारे की भावना में भी मजबूती आती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से करीब 91,000 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार री साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रातौर सामी आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा पहली रा हुक्म ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू इस साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। आवता एक सप्ताह ताई सरहदी हलका में पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण री शंका। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स रो खास केंद्र बनावन सारू केंद्र और राज्य सरकार मिलर काम करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी री मौजूदगी माए आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे राखी जी आला दर्जारी मीटिंग माए ओ फैसलो करी चियो। मीटिंग माए मुख्यमंत्री बाड़मेर और बालोतरा रा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़ियो नोडल अधिकारी नियुक्त करन रा हुकम दीना।

0: भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण रा अहलकाराओं राज्यमाए पिछाण करी जी ठोड़ा ने जानकारी देवन बाबत कहो। इ मौके केंद्रीय मंत्री रेड्डी कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री आगरी सोच नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे कारण देश माए जमी हेतों खनिज निकालवा रा हल्का माए घणो सुधार फियो है। वे कहो कि राज्य सरकार री साफ नीतियां और निवेश रे अनुकूल वातावरण राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामी आ रियो है। श्री रेड्डी कहो कि राजस्थान माए रक्षा सूरज री रोशनी बिजली बनावन और मोटर गाड़ियां बनावन रा हल्का माए आ खनिजा री बढ़ती मांग पूरी करण रो बूतो है। वे प्रदेश माए निवेश और उत्पादन बढ़ावन सारू खनन नु जुड़िया मुद्दा रा टेम सर निपटारा माथे जोर तीनो। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रा कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति रो भरोसो दिरायो है। वे बतायो कि दुनिया माए मौजूदा हालात रे कारण उपजी अनिश्चितता रे बावजूद राज्य रा सगला टर्मिनल डिपो और पेट्रोल पंप मथ तेल रो पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता कहो कि घरेलू ग्राहकां सारू रसोई गैस री पूर्ति सामान्य है। वे जनताओं अफवाह माथ ध्यान नी देवन री अरज कीनी। इन बीच पहली वाला केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज झुंझुनू जिला माए जनताओं ईंधन बचावन री अपील कीनी।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नियुक्तियां होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में है, तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काफिले में बना कर हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गई, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को।
0: इन बीच सवाई माधोपुर जिला में पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवन री शिकायत पाछे नाप तौल विभाग रा जांच दल जिला रा 11 पेट्रोल पंप री जांच कर जरूरी कार्रवाई कीनी। आ पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवनो मिलिया पाछे संबंधित पंप रा नोजल सीज कर दिया चिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई रा तौरों फौजी सटीकता सूचना नियंत्रण कूटनीतिक संकेत और माली संकल्प ने एक साग पेश करी चिया। सेना प्रमुख नई दिल्ली में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर मुद्दा माथे राखी जिया सेमिनार में बोल रहा है। वे कहो कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत गहराई ताई वार करता थका आतंकी ढांचा ने नेस्तनाबूद करिया पाछे सोच समझ हर एक मकसद रा तहत रोकी चियो। जनरल द्विवेदी कहो कि शांति तय करण विकास री रफ्तार तेज करण और दुनिया माए माहौल ने आपरा पक्ष माय करण सारू देश री ताकत रो इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ सागे करनू चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता री आवन जावन री ठोड़ाऊ लावारिस कुत्ता ने हटावन रा लारला हुकम माय किणी भांत री राहत देवन नटक्यो है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ री सदारत वाली पीठ अदालत रा ई बारा माय नवंबर 2025 माय दिया जया हुकम माय बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां आज खारिज कर दीनी। अदालत एड़ा कुत्ता ने आश्रय स्थला माय राखण रा हुकम दीना। अस्पतालां स्कूलां और दूजी ठोड़ा कुत्ता कानियों हमला करण रा वाकया रो हवालो देता था का पीठ कहो कि हुकम री पालना नी करण वाला अहलकारा ने अदालत री अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई रो सामो करनो पड़ सके है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलावन रो प्रस्ताव है। इसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग राखी जी चिणमाए ई परिवहन सेवावां और बसा री खरीदी रा काम री प्रगति रे बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए बताई जियो कि अगस्त महीना ताई राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन बसा और 30 एसी स्लीपर बसा

0: मुहैया करावन री ई जानकारी दी री जी। ए बसा चलावन सारू प्रदेश माए 9 नुआ ई बस डिपो ई बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे माए जोधपुर मंडल रा रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन रो दौरो कर व्यवस्थावां री जानकारी लीनी। वह स्टेशन परिसर माए साफ सफाई री व्यवस्था पीवन रा पानी प्रतीक्षालय और गाड़ियां उभीकरण रिठौड़ समेत मुसाफिरा ने मुहैया कराया जावन वाला न्यारा न्यारा सुविधा रो बारीक जायजो लीनो। DRM पाली मारवाड़ जोधपुर बीच विंडो ट्रेलिंग री जांच कर न्यारा न्यारा टेसना माथा हिफाजत जुड़िया कामा रोई जायजो लीनो। कोटारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व माए जनावरा री हिफाजत एर निगरानी तंत्र ने मजबूत बनावन सारू अब सूरज री रोशनी मड़ी बिजलियों चालन वाला CCTV कैमरा लगाया जा रहा है। इनु घना जंगला माए पानी रा कुदरती एर इंसान कान्यू बनाई जा स्रोता माथे 24 घंटा बिना रुकावट नजर राखी जा सकेला। अहलकारा रे मुजब नुआ कैमराओं वन विभाग रा फील्ड स्टाफ ने जनावरा रा व्यवहार जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करण और हमारा इलाका री निगरानी माए मदद मिलेला। प्रदेश री महिलावां ने गर्भाशय रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू चलाया जा रहा टीका लगावन रा अभियान रा तहत कोटपुतली बहरोड जिला रा मेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे हाल ताई 65 टाबरियां रे टीका लगा दिया गया है। अहलकारा ने मुजब गांवाई हलका माए स्वास्थ्य विभाग रे टीमा लगातार काम कर रही है। इनु 32 तादाद माए टाबरियां रे टीका लगाया जा रहा है। जयपुर जिला माए हर महीनारी 5 और 20 तारीख ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरा रा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियां री ओर सवारे 8-9 बजे ताई ग्राम पंचायता और सरकारी स्कूलां माए खास शिविर लगाया जावेला। आमाए जनता ने योग प्राणायाम और कसरत रो अभ्यास करायो जावेला। इस आगे ANM और आशा कार्यकर्ताओं री मदद मौसमी बीमारियां बचाव सही खान पान और साफ सफाई रा बारा माए जानकारी दी जावेला। अरब मौसम प्रदेश माए पाकिस्तान नु लागते सरहद कने रा हलका शेखावाटी हलका और कोटा संभाग माए जबरदस्त लू बाज रही है। आ हलका माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यो है। मौसम विभाग रे मुजब 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सागे चित्तौड़गढ़ सब 19 ठौर रहो। इरे अलावा श्रीगंगानगर माए 45.9 अलवर माए 45.8 और पिलानी माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। राजधानी जयपुर माए आज पारो 43.2 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता एक सप्ताह माए राज्य रा आतुणी हलका माए सरहद कने तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवन रा आसार है। वे बतायो कि आवता 3-4 दिन ताई प्रदेश रा कुछ हलका माए आंधी चालन री संभावना है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है।
0: तेज गर्मी और लू ने ध्यान रखता थका प्रदेश रा सगला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र माए खास इंतजाम करी चिया है। अस्पताल माए मरीजा सारू बिस्तर रखन सा गई ORS कॉर्नरी बनाई चिया है। इस आगे जनता ने गर्मियों बचाव रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। न्यारी न्यारी थोड़ा सड़का माथे पानी रो छिड़काव करावन सागे लोगों दोपहरां री बगत जरूरी वेवन री सूरत माई बाहर जावन री अरज करी जा रही है। IPL क्रिकेट होड़ रा तेत आज जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माए राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स बीच मुकाबलो फैला। वो मैच अमू थोड़ी देर पछे 7:30 बजे शुरू फैला। अंक तालिका माए फिलहाल 5वां नंबर री टीम राजस्थान रॉयल्स ने प्ले ऑफ दौर माए पुगण सारू वो मैच जीतनो जरूरी है जदके लखनऊ सुपर जायंट्स

0: अंक तालिका माय आखिरी छोड़ माथे है। आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार री साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर ऊसा में आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय सलामाए राखण रा पहली रा हुकम ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। राज्य राखणखर हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, बच्चा है कि साल भर स्कूलारा चक्कर लगावे, अबे जो गर्मी ने देखता तका टाबरारी। लंबी छुट्टियां है और लंबी छुट्टियां में तकरीबन हर माता पिता ने, जहाँ खास करने छोटा टाबरिया है, आ शिकायत रहे कि टाबर कहणो नहीं माने, घर में कोई बदमाशियां करे, सामान टी उटी करे, चीजा बर्बाद करे और सारे दिन टीवी या मोबाइल रे माथे लाग्यो रहे।
1: टीवी छोड़ो, मोबाइल दे दो। टाबर ने अगर घर में चुपचाप राखनो है, उत्पात नहीं कराना है, तो मोबाइल दे दो। और ओ भाई लोग, मोबाइल ही इन उत्पात रो कारण है।
0: बिल्कुल
1: और अगर आप टाबर रहे अन गर्मिया री छुट्टिया में 1.5 महीने अगर आप रोज घंटे में ज्यादा मोबाइल दियो, तो समझ लो कि वो टाबर ने जिद्दी बना रिया हो, टाबर ने गुस्सेल बना रिया हो। आपने एक होच में पड़ी के भाई हाँ, गर्मिया री छुट्टिया में टाबर कई अलग चीज ही के टीवी और मोबाइल दूर रहे। किरण जी, टीवी और मोबाइल में दूर रहने वास्ते शहरारे मायने तो कई तरह री जकी है वोकेशनल ट्रेनिंग हुए, कोर्स हुए।
0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, कि भाई अबे आप अगर टाबर ने बार बार मुंडा बोलन क्या बोला कि भाई टीवी मत देख या मोबाइल मत इस्तेमाल कर, तो बच्चों एडो नहीं करेला। आपने टाबर ने कटे न कटे एडो बिजी राखनो पड़ेला, उनने कटे न कटे उनने हर क्षेत्र में उन्हें एक्टिव राखनो पड़ेला, जिन सु कही वेला कि उरु ध्यान है उन चीजा सु हटर दूसरी चीजा रे मायने लागेला।

0: अब कोर्स कहो कराना थोपनो नहीं है। बच्चारी खुद रही जो रुचि, मान लो उन्हें खेल कूद में रुचि है, तो आप कोई खेल अकेडमी में भेज सको आप रे आस पास में, नहीं तो गाँव वाले मायने तो देखो खूब खुला चौगान वे बटे टाबर खेल सके। सुबह खेलने भेजो, शाम रा खेलने भेजो, इनसे शरीर भी स्वस्थ रही, शरीर मायने रोग भी नहीं हुए और बच्चारी बॉडी भी अच्छी बनेला। इनने सिवाय भी आजकल बहुत तरह का कोर्स चाले, AI जनित बहुत इन्हें जो है अबार बहुत मांग है। छोटी कक्षाओं आजकल देखो स्कूल मायने भी अब कह रहा है कि प्रारंभ करेला AI जो जानकारी है वह टाबरा ने देवे, तो आप इनसु संबंधित अगर बच्चारी रुचि है तो आप उन्हें वो सिखा सको। इनने सिवा कला सु जुड़ियोड़ा कई कोर्स है, चित्रकला है, इनने सिवाय और कोई तरह रिहा नृत्य है, संगीत है, कोई वाद्य यंत्र बजाना यदि बच्चों सीखनो चाहे तो कुल मिला बात आ है भाई लोगों की इन टैमरा अगर आप टाबरी एनर्जी रो सही इस्तेमाल अगर आपा करा तो वो कोई न कोई दिशा रे मायने देखो वो आप रो ध्यान लगा वेला और धीरे धीरे लगातार करता करता आउन वाला समय में जब तक उरी पढ़ाई पूरी वेला नहीं तो उरे हाथ में एक एड़ो कौशल वेला कि अगर नौकरी भी नहीं लागे तो वो उन कौशल रे माध्यम से जो है आपरी आजीविका चला सके।
1: बिल्कुल देखो कि डेढ़ महीने री छुट्टी रो उपयोग जो को है वो टाबर किन तरह करे माते टाबर रो विकास भी निर्भर करे। अगर टाबर इन डेढ़ महीने मायने कोई चीज सीखे तो वह सीखी चीज मेरे पूरी जिंदगी काम आवे। आप जगह भी समर कैंप लागे और आ कैंप पर मायने फीस भी घनी कोनी लेवे और कई जगह ये सोसाइटियां रे थ्रू कैंप लागे तो वे में आप शतरंज खेलनो सीख सको, टेबल टेनिस खेल तो है ही, खेल रे साथ साथ कई जो संगीत री बात करी तो सुबह और शाम रो जो चार घंटा सुबह चार घंटा शाम वे ने आकठी भेज और इन मोबाइल टीवी री लतू अलगो कर सको। अब करनो वो आपने।

0: बिल्कुल सर गुरविंदर जी, और इनने सिवाय एक चीज और है कि आजकल आपा शहरी जिंदगी में खास कर देखा तो इतनी आपा धापी वेगी है, भाग दौड़ वेगी है, परिवार परिवार रहे, साथ बैठने ने जो है समय नहीं है। तो छुट्टिया ने मायने टाबर है, आप रिश्तेदार खाने ले जाओ, नाना नानी रे बटे जावे, मामा रे बटे जावे, बुआ रे बटे जावे, मिले लोग उन बातचीत करनी सीखे, तो अभी एक तरह की जो है जीवन जीवन की कला है और इन सामाजिकरण बच्चा रो अच्छो वे, और धीरे धीरे जो टाबर है जो बड़ो वेला तो उरो एक अच्छो सामाजिकरण वेला, समाज में एक अच्छो आदर्श रूप में जो है उरो भविष्य सुनिश्चित वेला।
1: बिल्कुल, देखो कि एकल परिवार है चाहे वह शहर आर महानगर में रहे तो वहाँ टाबरारी जकी सोच समझ और जिन तरह री परवरिश हुए तो वह एक एकल खोरिए जीव है। अगर वे ने आप रहे दादा दादी हूँ, नाना नानी हूँ, काका बटा हूँ, गाँव में बेचो, संयुक्त परिवार है उठे बेचो, रिश्तेदार ने बेचो, तो उन्हें एक तो आनो जानो आवे, एक रिश्तेदार रे घरे जावे तो की कर रहनो है, कहीं बोलनो है, कहीं होचनो है, सब चीजा रो विकास हुए, समाजीकरण इन्हें के हुए। अब देखो गाँव रे महीने तो पहले जड़ा हालात भी नहीं रहा, गांव विकास री और है, वे महीने सड़क है, बिजली है, पानी है, ये री सुविधा है, और हर घर प्रयास कर रही हो कि भाई वो आगे बढ़े। मारो एडो माननो है कि भारत देश रो किसान पूर्णतः आत्मनिर्भर हुई, विकसित हुई, उन्हीं दिन आपा विकसित राष्ट्र बना, और किसान रे विकास मुजब पानी फसला मुजब सरकार भांत भांत री योजना वाला वे माने एक तरह सही कीमत मिले, माने महीने जो भी फसल उगा बीमारी कम हो वास्ते कम पेस्टिसाइड इन तरह रो छिड़काव करे, तो परंपरागत खेती में भी कई नई चकी टेक्नोलॉजी है वह जोड़ दी है सरकार, कई अड़ी योजना है जो बूंद बूंद सिंचाई अड़ी है, पॉली हाउस बनाने वाली है, ये महीने बहुत बड़ो अनुदान भी देवे, और अनुदान देने साथ जब मान लो फसल पाक जावे तो उगे विपणन जो को है सहकारी समितियां रे थ्रू करे सरकार, कही है ना तो खुद जो की है खरीफ री फसल खरीदे।
0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, सरकार चाहे खरीफ हो चाहे रबी री फसल हो, खरीदन रो जो MSP माते हुए उरो प्रावधान सरकार करे ताकि किसानारी जो फसल है व्यूड़ी है वह उचित मूल्य उन्होंने जो मिल सके, और इन मुझे भी जब देखो तब जो खरीफ री फसल है इरे सारू भी जो है जो MSP खरीफ जो उरे सारू 2.6 लाख करोड़ जो राशि है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपने मंजूर कर ली है, किसान ने खरीफ री फसल मिलन वाला न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उरी मंजूरी वेगी है, साथ ही साथ समर्थन मूल्य लागत रे माते 50% मुनाफा रे आधार माते तय करियो गयो है, और अनुमानित रूप से वित्त वर्ष 2026-27 रे सारू किसान ने 2.60 लाख करोड़ रो भुगतान वेला साल रे करीब में 824.41 लाख मेट्रिक टन खरीफ फसल री खरीद वेला, और पिछले वर्ष री तुलना में MSP रे मायने भी जो है इजाफो करियो है, और अधिक जो वृद्धि है वह सूरजमुखी रा बीज उनमें है 622 रूपए प्रति क्विंटल, उन्हें साथ कपास में 557 रूपया प्रति क्विंटल, नाइजर सीड में 515 रूपया

0: भाई लोगा जो कि पहल की एमएसपी ही रेट ही उए रे महीने ओ सरकार बदलाव करियो है कि भाई जिन साल पहल के फसल खरीदी उन फसल रे महीने लगभग हर फसल में 400-500 रुपया रो मुनाफो है। खास तौर माते मध्य प्रदेश रे जका किसान है सूरजमुखी है तो ये रे महीने 622 रुपये प्रति क्विंटल जको है वह वृद्धि करी गई है। और जो की तिल और तिलहन आली जकी है फसला उए रे महीने 500 रुपया प्रति क्विंटल सरकार जको है वो बढ़ोतरी दी। जो लाले साल मूंगफली रे जको भाव है बीमे अब की बार जकी सरकार ही खरीद फसल है वो माते 500 रुपया ज्यादा आपने मिली। किरण जी कुल मिलार कहीं है कि देखो कि किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसान री जो की खेती है बस सब रिस्की काम हो गया।
1: बिल्कुल सर,
0: खेत बाउनु लेन फसल ने बोरी में भरन तक उरे में अलग अलग पड़ाव में उन्हें अलग अलग बाधाओं रो सामनो करना पड़े। तो सरकार इन मुजब आ भी चाहिए है कि भाई किसान ने नुकसान नहीं हुए फसल रो भी बीमो हुए तो ऐसा सब जानकारियां पहला लोगों कने ही कोनी। अब आज हर प्लेटफॉर्म माते जानकारी उपलब्ध है और किसान खुद जागरूक हुई और अगर आप पढ़ेंगे ना तो राह को जना आपने जानकारी मिली। अब आप अगर अनपढ़ हो आपने मोबाइल ही चलानो नहीं आवे पढ़नो लिखनो आपने नहीं आवे तो आपने आज रे टाइम में भाई नुकसान है। इन वास्ते थानी साथे हुई जकी हुई थाना जका टाबर है चाहे लड़को वो लड़की हुए ने भाई पढ़ाई लिखाई कराओ के जितनी भी आने वाले टाइम री नई बात है वे सीख सके।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, किसान रे सारुन जो आप कह रहे हो सरकार बहुत सारा प्रावधान करे और बहुत नई नई तरह री तकनीका और नई नई तरह का कार्यक्रम और योजना किसान रे सारो लाती रहे। इनमें देखो अबार एक जो नई नई योजना चलाई है वह है कि किसान जो है आपरी कृषि करण रे सारो उन्होंने जो कृषि यंत्र है उन्होंने वह किराए मत ले सके ऐड़ा सेंटर जो है खोले ला खेती रे स्वरूप।

जो बदल रही है और कई सिरो फायदो जो है छोटा किसाना ने मिलना बहुत जरूरी है। और जो छोटा किसान है वे कई बार खुदरा यंत्र नहीं खरीद सके, ट्रैक्टर है या अन्य कई तरह के जो यंत्र है वे नहीं खरीद सके, तो इन कारण से हमारी जो खेती है वह पूरी ढंग से नहीं वे पावे। तो केंद्र और राज्य सरकार मिलन जो है कस्टम हायरिंग सेंटर योजना जो है बना रिया है, और एक बहुत राहत जो इनसु है किसाना ने, छोटा किसाना ने खासकर वे सके। ग्राम पंचायत स्तर माते ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां और राजविकार माध्यम से जो है एडा केंद्र खोला जावेला, जटे जरूरत रे मुजब आधुनिक मशीना किराया रे माते ले सके और वे आपरी खेती बाड़ी में इरो इस्तेमाल कर सके।

0: देखो अकाउंट मतलब है कि भाई देखो कोई गांव रे मायने कई चीज थ्रेसर है या कोई मान लो रीपर है या सीड कार्डन रो कोई है ट्रैक्टरी मान लो तो उपलब्ध नहीं है तो सरकार जोधपुर जोधपुर रे मायने एडा 50 सेंटर बनावनी चाहे वहां सेंटर माते कृषि यंत्र जका है वह किराए माते उपलब्ध हुई और जट जट कोऑपरेटिव सोसाइटी है गाँव रे मायने तो सहकारी समिति एक यंत्र खरीदन किराए माते चला सके। अगर मान लो सहकारी समिति नहीं है तो क्रय विक्रय समिति है या वो नहीं है तो आप रो कोई एनजीओ है या राजीविका जुड़ियों कोई गैर सरकारी संगठन है तो वह इन तरह रे यंत्र खरीद और किराए माते चला सके। तो सरकार कठिन कठे प्रयास कर रही है कि किसानों की आय जकी है वह बढ़े। और किरण जी देखो हमें अताई गणी होगी इन कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरा तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आपके साथ ही गुरविंदर विश्नोई
1: और किरण ने दिराओ सीख
0: राम
1: राम
0: राम,
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सीमा डेरी गूंज।

0: बाबा राम राम।
1: अरे बाट कोडा जड़ी है आ न है जो कोटी बीड़ो आवर मैं आवर आटी कमरे में
0: आयो नवला बा आयो
1: कौन हम भाई छोड़ो ओळखियो कोनी
0: नवला बा।
1: अरे हां रे भाई धोड़ू भरियोड़ो कहीं है जो कह नहीं के रगदोली जीड़ आयो अटे
0: आप तो खेल खेल तो आयो मैं बच्चा था गोद में नवला बा पास आयो नवला मिलू मैं नवला बा।
1: हां तो कहीं कबड्डी रमी कोई कुश्ती करी कहीं है
0: कबड्डी नहीं कुश्ती हैंग तरह खेला हूं मैं।
1: हां मैं थाल जगह भाई जगह उना है जो मौज उड़ी है बड़बड़ती रेत में है जो खेलो रमो हो दिनू के रमो हो मैं क्या
0: एक तो सुबह सुबह बेगा खेला और पांच बजे पछे
1: जो है जो आप ही दही अटे खेल मैदान अटे मारे अटे आया जुड़े हूँ बरियोड़ा नहीं
0: नौ लो बार
1: कौन हाँ तो मैं थड़ थड़ मने हूँ धोख दे
0: नौ लो बार अगजी हूँ अगजी राम राम
1: ओ अगजी ठीक ठीक ठीक अरे वारे अगजी वाह अगजी हूँ था ना कई दिन हूँ तक जी मेरी दे जी गोली का डकटी जा है पास
0: मैं तो अबार अट्टे ढाणे माते खेल लियो और बच्चे मारे गांव में शहर है उठे भी खेलने आयो छुट्टियां चालू हुई तुम क्या करा
1: तो खेल खेलो जो बच्चे इंडी तेल लगान खेलो
0: इंडी तेल कोई आवे पकड़ नहीं पाओ चिकना हो जाऊ बड़े फर्स्ट क्लास तो कोई आवे नहीं तो आउरा हाथ फ्लिप हो जावे फिसल जावे और मैं तो लगाने आया हूँ और दूजे मैं पकड़ ले पानी लाओ मैं
1: पानी लाऊ भले नारी आटो देख भाई ताकि वो बाल्टी भर ले थारे हिनान कर ठीक है। तो एक बात है भाई एक जी खेल खेलो नी तो खेल ने खेल रही बाउंडों खेल रहा हूँ
0: सही बात है।
1: और जो जे मान लो कभी कोई वो कह नहीं थाने कोई बना दे के भाई थे खिलाड़ियन खेलो तो थारे उठे है जो कुटल ही नहीं होनी चाहिए उठे कहो है भाई न्याय होना चाहिए
0: बिल्कुल मतलब हाँ ठीक है
1: समझे नहीं के भाई आप रे कोई कि नहीं कह नहीं खेल खेले तो आप ताकत अकल होशियारी खेले और पच कही है कई भेदभाव कर दे कई फैसला गलत कर दे तो झगड़े ना करो जा
0: बिल्कुल हो जाए
1: की बात है। कोई है जो कह नहीं के भाई देखो कोई उसाद है और कोई कहूँ कह वो गैपरी कह रहा कहूँ कह
0: रेफरी रेफरी रेफरी भी हुए एम्पायर भी हुए अलग अलग खेल में अलग अलग आदमी हुए अलग नाम पुकारा।
1: हाँ तो वो बे है जिको कह नहीं के आप रे जिको कोई फैसलो है हारियुड़ बतावे जीत
0: मान सम्मान होना चाहिए खेल रो और खेल
1: हार जीत देखे हाँ कोई कह नहीं कोई मोटी बात को नहीं
0: एक टीम जीते ला दूजी हारे ला तो ठीक बात
1: है मन छोटो मोटो नहीं करना
0: मन छोटो मोटो नहीं
1: करना मुकड़ो हूं तो आया नहीं खेल खेले हम
0: खेल खेले
1: खेल तो दुनिया में घड़े ही है भाई अड़ुता ही है हम ये नहीं कह के धनी लुगी रही खेल है देखो मैं कह के भाई देखो के आप रे कह कोई कहो माने कोई नहीं माने की कई बात हूँ तो मैं देखो है तावड़ो करड़ो पड़े अग जी आजकल एकदम कहो है इतो तावड़ो पड़न ढूको थे कह नहीं बढ़ती मैं रमो
0: नवलबा नहीं है मैं मौसम विभाग समाज सुनियो मैं कही है यो हफ्तो और अगलो हफ्तो भीषण गर्मी होवेला
1: ओ नव तप्पो आई को नहीं आ
0: मैं आ रही हूँ मैं कही है, मैं बाकी रह गया नव तप्पो जो जाए और कही
1: है। अरे भाई वो है बस कही है मारो मन हो कम के भोगी चल परिक्रमा है
0: अब अर्थ है रे गर्मी में थोड़ा जाप तो रखो।

0: रहने दो,
1: जाऊं विचार हो, मैं क्या
0: विचार कर लो, पछे थोड़े देर पछे कर लो कहीं मैं
1: वो बा तीन बरो एकर वे क्या तो मैं जाऊं मारो विचार है
0: तो पठ सुबह सुबह चला मतलब ठंड ठंड में चलना
1: होता है कोई हाल नो है। देखो मैं आगे कई वे पड़ा है कि भाई देखो तावड़ो पड़े तो कोई देखो मिन का बाबत तो हो चाहिए है मिन पर दाव डांडे बाबत तो हो जो कोई क्या नहीं पंख पंखे रूवा बाबत हो जो
0: नहीं
1: और हो जो हैंगर है जो क्या नहीं खाते
0: बहुत जरूरी नवलबा आप तो फिर भी मुंह से कह सका डांडा हो गया क्या कह तो आपन होश में चाहिए के लिए पानी के लिए रखनी चाहिए कैंपर जो एवेज रखो गाय बंद।
1: अरे हाँ भाई थे तो मने ज्ञान दे रुका भाई भाई
0: नवलबा मैं कटे ज्ञान डांडे मत दे के मैं अब रट गणे थारे से केली बनाई पड़ी।
1: अरे केली कोनी खेली है
0: हाँ खेली खेली
1: खेली भरियोड़ी है कुंडिया भरियोड़ा है पराता भरियोड़ी है छीका भरियोड़ा है चून चुगा देवा हाँ और वह जड़ो कह नहीं की भाई आप रे हारो जीव जिन्हें उन्हें देव खैर की कोनी हम देखो भाई देखो करो जेड़ा हो जी ही ना है बात है तो मैंने करे करियोड़ो काम हाथ रहे
0: हाँ नलबा
1: लो मैं थे यूं करो को खेल खेले हम एड़ो कहो है जो कोई गीत रो नहीं
0: हाँ है नहीं
1: उनता आया थे
0: हाँ उनता आया नहीं
1: हुणो
0: लो नलबा हुणो

0: वाह भाई, ओ वाह भाई, शहर होनी हो जी कोई
1: बढ़िया गीत है,
0: बढ़िया थाने क्या नहीं कोई तापो देनो सही है। ला हमें यू करो भाई, कोई विगत बार जानकारी दो, कौन जलमिया कौन फोत होया, कोई कई दिनों आया हो तो कोई खास बताओ।
1: घना सारा है आप जिके जन्म लिया होना बात कर रहा
0: हूँ,
1: पहले है नाना साहब,
0: आज जन्मिया जी की बात करो।
1: हाँ आज जन्मिया ने, आज मैंने बात कर रहा, पहला है नाना साहब, आज दिन 1824 में जन्म लिया महाराष्ट्र में, ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम रा प्रमुख शिल्पकार, कानपुर में विद्रोह सेना रा नेता रिया।
0: ओहो ठीक ठीक ठीक, नाना साहब,
1: नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय रा दत्तक पुत्र।
0: हाँ, देखो के भाई देश गुलाम हो और अंग्रेज जुल्म करता अत्याचार करता के तो कटेरा कटी है जो कह नहीं भाई, देखो क्रांतिकारी है
1: हाँ।
0: बे एक थोड़ भेड़ा होता है जो अंग्रेजों कह लड़ाई लड़ता
1: बिल्कुल,
0: तो बा मैं कह नहीं महाराष्ट्र में जन्मिया,
1: महाराष्ट्र
0: कह नहीं बरेली में मेरठ में आन लड़ाई लड़ी
1: तो भाई देखो
0: करियो भाई करियो, देखो तो करियोड़ा काम कोई नहीं भूल सके और है जो कह नहीं है जुलम अत्याचार सहन करिया ना अपने है जो देश की आजादी दिलाई तो आने कोई नहीं भूल सके, आने परमाती पौर धोग देवा कोटि कोटि नमन करा और मनरेगा फूल चढ़ाऊ बड़े
1: बल है। गिरीश कर्नाड आज दिन 1938 माथेरन महाराष्ट्र में जन्म लिया, ये भारतीय अभिनेता निर्देशक नाटककार और कन्नड़ लेखक रिया।
0: ओ ठीक ठीक, आप फिल्म में काम करियो,
1: फिल्म में काम किया, ये साउथ वाली फिल्म में काम करिए।
0: हाँ बेदिकना भारत में जिकी क्या सिनेमा बनी होनी वो में है जो है खास है जो आप छावी भागीदारी रख
1: हाँ, कहीं हर नाटक में भी अभिनय की हो
0: आप करियो भाई, देखे उठी थोड़ा नाटक हल्ला है मार रहे देख जुड़ा तो कह नहीं अरे बिरला मिनक ने कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन है हर मन रेरा भूल चढ़ाओ बड़े
1: बड़े है। रस्किन बॉन्ड आज दिन 1934 कसौले में जन्म लिया, भारतीय एंग्लो इंडियन लेखक है और सादगी और प्रकृति प्रेम से जुड़े रहे।
0: ओ ठीक ठीक है जो कह नहीं कुदरत रहा चलिया और आप लोग काम चौको करियो तो नहीं है जो कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन है और मन रेरा भूल चढ़ाओ।
1: एक बात खास है नवलबा, रस्किन बॉन्ड है नी 500 से अधिक कहानी और उपन्यास निबंध लिखे।
0: हाँ लिखा रहा मोटा, हाँ भाई गुणी विद्वान
1: कहीं
0: दो भाषा में लिखता
1: हाँ
0: तो है जो कहूँ नहीं आने कोई नहीं भूल सके भले
1: भले। पी लीला आज दिन 1934 में जन्म लिया, प्रमुख भारतीय पार्श्व गायिका और कर्नाटक का संगीतकार।
0: ओ ठीक ठीक है जो
1: मलयालम तेलुगु तमिल कन्नड़ कई हारी भाषा में भी
0: हाँ दिखना थे भारतीय भाषा है मामा गाया है जो कह नहीं भाई आपने अदाकारी भनकारी बताई तो जटे बताई जितनी चौकी है क्या मैंने राजी हुई तो कोटि कोटि नमन है मन डेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: बड़े। नीलम संजीव रेड्डी यहाँ तो ऑल को ओला
0: हाँ हुनी नाम तो घड़ो हुनी थोड़ा बात रो पड़ गो
1: ए
0: मारे साहब होनी
1: हाँ
0: अपर देश राष्ट्रपति भी
1: छठा राष्ट्र
0: हाँ जी बात
1: है। आज 1913 में इल्लूर आंध्र प्रदेश जन्म लिया, 1967 लेने 75 लोकसभा अध्यक्ष भी रिया और आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री भी रिया।
0: अरे भाई देखे है जो बोटाली जो कहनी के भाई राजकाज की बात है नी
1: हाँ
0: मैं काम करियो मजबूत करी सा
1: हाँ।
0: और इतना मोटा ओदे माते है जो कह नहीं है बिराजिया और देश रा राष्ट्रपति बनिया तो आपरी टाइम रा घणी फैसला लिया तो बे हाल ही कहे के भाई

0: वाह भाई रे वाह, कहनी खेल तो खेल ही है,
1: बिल्कुल मतलब
0: खेलू करा रहा खेलू है जो कहनी भाई मिनगरी कहनी के आबरी आबरू बदे
1: बड़े
0: और खेलू है जो का मिनक राजी वे
1: मिनक राजी वे बड़े
0: हमें
1: जो कि फोर्ट यानी मैं बात करा।
0: हाँ
1: ये पहला है विजय तेंदुलकर, आज दिन 1928 कोल्हापुर महाराष्ट्र में फोर्ट हुआ। ये भारतीय रंगमंच रा अत्यंत प्रभावशाली मराठी नाटककार पटकथा लेखक और पत्रकार रिया।
0: ठीक ठीक खबर नवी जी हाँ आप कहनी की भाई नाटक दूजे करता अदाकार फनकार हा तो कहनी तेंदुलकर तो यू ही नाम खाटो जग चाओ है।
1: हाँ
0: तो आनी है जो कोटी कोटी नमन करा मंदिर फूल चढ़ावा बड़े
1: भले हजारी प्रसाद द्विवेदी आज दिन

0: 1979 में फोत दिया। हिंदी का शीर्ष निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक रिया।
1: मान विद्वान है भाई।
0: शांति निकेतन में हिंदी का शिक्षक भी रूप में काम रिया।
1: अरे भाई जानू के विद्वान है, गुणी विद्वान है और हिंदी भाषा बाबत घणो काम करियो तो कह नहीं कहने कोई भूलो सवाल ही कोनी। कोटी कोटी नमन है, मन रेरा भूल चढ़ाऊ बड़े
0: बड़े। जमशेद जी टाटा आज दिन 1904 में फोत दिया। भारत का महान उद्योगपति और विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह।
1: जमशेद जी टाटा है। टाटा कंपनी ने थर्पणा करी और जब आउन जाऊन ने साधन ही होता को नहीं तो मोटर गाड़ियां बनाई तो मैंने गटी उठी आवता जावता हैंग बाता है ना तो जग जाओ कह नहीं घराणो है तो कह घनी दूरदृष्टि हा
0: दूरदृष्टि
1: तो देश ने हैंग तरह है जो फायदो करायो
0: टाटा स्टील हाँ
1: तो वो
0: कह बिजली में भी आ गया है नहीं।
1: अरे हूँ तो कू भाई हैंग ठोड़ करे काम तो आने कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है, मंदरेरा फूल चढ़ाओ बड़े
0: बड़े। जानकी रामचंद्रन आज दिन 1996 में फोत है। भारतीय अभिनेत्री एवं राजनीतिक रिया। तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री भी रिया।
1: ओहो ठीक ठीक ठीक हाँ भाई तो क्या नहीं मद्रास में हा है तो नहीं है जो कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है, मंदरेरा फूल चढ़ाओ बड़े
0: बड़े। शंभू मित्र आज दिन 1947 में फोत है। भारतीय फिल्म और थिएटर का कलाकार है। बंगाली थिएटर मुख्य रूप से काम करता
1: है। हर जी बात है देखो आप छोड़ मचो का काम करिया तो कह नहीं बात कितनी जूनी पुरानी वह तो बात नहीं तो कह नहीं टाइम जाते रहे पर बात उबी रहे तो यही है जो जग चावा है कह नहीं काम करिया तो नहीं कोई नहीं भूल सके। कोटी कोटी नमन है, मंदरेरा फूल चढ़ावा। अरे मैं मारे एक मंदरेरी बात है भाई अर्जी सी होना है कोई बढ़िया
0: हाँ
1: तो सुनो
0: लो नवलवा सुनो।

0: बात निहाल कर दिया बढ़िया अर्जी सुना दियो। मैं देखो अग्जी हूँ एक बात पूछे मैं देखो ठंड पोर हो गो है बाल्टी भर लो हिनान कर लो है जो रसोड़ तैयार कराओ मारो एक ही कहो है कि तावड़े में दिन रात उठी फिरो मत भों भों करता मत फिरो कटी नकी राजा कटी कोई है क्या नहीं तबीयत खराब हो जा कर जा की ठा नहीं और जेब कोई घनो जरूरी काम है तो मत तो ढकन जाओ बढ़िया है जो क्या नहीं पानी भर पेट पियो ठंडी सीजा जीमो और सिया सिया जाओ सिया सिया आओ ऐ भरता है तो हमें देखो कि भाई थे रसोड़ो हिना नंबड़ कर लो रसोड़ो तैयार कराओ हूँ फेर लू माला और माला फेर बैठो हूँ जित थे तैयारी पूरी करा दीजो और हमें देखो तारा खासा ऊंचा आएगा है अंदर वो पड़गो है और प्रोग्राम रो टाइम ही होगो है पूरो तो भाई सुनो लेवा मैं ही राम राम
1: राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
2: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
1: तो चांद को ही देखिए ना।
2: मगर वो सांस नहीं लेता।

प्यारा सा गीत सुना अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, रिफ्यूजी फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में। गीत के बोल थे जावेद अख्तर के, संगीत था अनु मलिक का। आइए अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, जख्म फिल्म से अलका याग्निक के स्वर में। आनंद बख्शी के हैं गीत के बोल, संगीत एम एम करीम का।

कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत अलबेला फिल्म से। जतिन ललित का है संगीत, धुर शब्द रचना समीर की।

उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज़ में अभी आपने हद कर दी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था आनंद राज आनंद का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में गाया ये गीत। नदीम श्रवण का है संगीत, शब्द रचना समीर की।

जन्नत टू से भी ये गीत सुना आपने निखिल डिसूजा की आवाज़ में, सैयद कादरी की थी शब्द रचना, संगीत था प्रीतम का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में, सत्यमेव जयते से।

कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुने। कसूर फिल्म से नदीम श्रवण का है संगीत, गीत के बोल समीर के।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में

0: शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: That we will convert the current situation.
4: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना

नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark.

0: marks. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security, and port-related cooperation as key priority.

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार थे अदनान सामी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है इशकिया फिल्म से, राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। गुलजार के हैं गीत के बोल, संगीत है विशाल भारद्वाज का।

गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से अभी ये गीत सुना आपने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं रेखा भारद्वाज की आवाज़ में डेढ़ इश्किया फिल्म से ये गीत।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं विशाल मिश्रा की आवाज़ में हक फिल्म से एक और प्यारा सा गीत।

पद्मावत फिल्म से अभी एक गीत सुना आपने शिवम पाठक की आवाज़ में। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं मन चाहे गीत। दोस्तों, मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे मेल एवं पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गीत, तो आप मेल के माध्यम से हमें फरमाइश भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है मन चाहे गीत 531@gmail.com। हमें रहेगा आपकी मेल का इंतज़ार।

है हमारे पास रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक अर्चना अनुज आयुषी रमेश शेख मूसा भाईजान राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित रीतु मुकेश और जगताप, माने वाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र सुशीला अनिकेत और अंकिता, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ पंकज और तिरुपति, सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से ही फनेश सावित्री मोहित और देवी देविका गजेंद्र और पार्थ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत प्यार ही प्यार फिल्म से।

जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ खास प्रोग्राम में मन चाहे गीत में। और अगली मेल हमारे सामने स्क्रीन में आ चुकी है। भेजने वाले हैं लोपागढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा। कोला सिटी बरका खाना से अफजल शाहीन, सोनू नेपी और अफजल मलिक। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राहिब मेहराज जहां, मजनू कटे।

खुश रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और सुनिए अपनी पसंद के प्यारे प्यारे से गीत। अभी सुना आपने एक प्यारा सा गीत और चलिए बढ़ते हैं अगली मेल की तरफ। भेजने वाले हैं नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू, जामुन, प्रेम, पूजा, दुष्यंत और बेबी आराध्या। नागाचुन रोड कॉलोनी खंडावा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हम, जियाउल हक और उमर। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन और पायल। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी। साथ ही इसी गीत की फरमाइश भेजी है कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से महेश विश्नोई। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई दुखनी, सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना, अस्मा परी, आशु अहमद और समस्त फूल वाले परिवार। इन सब ने बहन जी आदाब और नमस्कार भी लिखा है। जी बिल्कुल, आपको भी नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

स्वागत एक बार आप सभी का मन चाहे गीत कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। भेजने वाले हैं बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। साथ ही इस गीत की फरमाइश भेजी है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ साइना और निवान, नीतिशा सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी ने। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगरी अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हीरामन, प्रणय और प्रतिभा। सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, दिल फिल्म से मुझे नींद ना आए।

के साथ जुड़ी हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। भेजने वाले हैं ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, सुमन, कृतिका और रमेश। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे और मेहराज जहाँ। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम, बबीता, निखिल और तन्वी। हरियाणा से अंकित, मोनी, प्रिंस, सीताराम और साहिल। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, सदानंद कुमार, गौरव और निशा रानी। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी ने। इसी गीत को सुनना चाहा है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने। इसी गीत की फरमाइश भेजी है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान, वसंतराव और निवृत्ति ने। सुनिए अपनी पसंद का कार्यक्रम का अगला गीत सिर्फ तुम फिल्म से। ये

जी हाँ बिल्कुल, मुलाकात तो बहुत ज़रूरी है, मिलते रहिए एक दूसरे से और खुशी और गम बांटते रहे। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। भेजने वाले हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार, हैप्पी, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी राय और प्रांजल। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की है पोटिया कला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक और सीमा, फजलिका पंजाब से भूषण खेरा, विष्णु विशाल, आरबी खेरा, शालिनी और जीवन, शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश, शिव सागर, इंदिरा ताई, सुनैना और स्वराज, विनिपैग कनाडा से कमल पाठक, सुनील, दीपिका, बेबी गव्या, सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव, जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और पूरा संघाई परिवार। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी और निमित आहूजा, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरित और गुरु शब्द सिंह राहुल ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आपके फरमाइश पे।

उत्तम नगर नई दिल्ली से अनिल, गौरव, कविता और मानसी, चंडीगढ़ से सतीश और विमला, कच्छ भुज से विजय, स्वाति और जयनीश, राजा सौराष्ट्र, राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती और प्राची और प्रवीण पुजारी, साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी, वीना, आशीष, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, इसी गीत को सुनना चाहा है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, सदानंद कुमार, गौरव आरव और अर्पिता। सुनिए अपनी पसंद का एक और प्यारा सा गीत तेरे नाम फिल्म से।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप बने हुए हैं मेरे साथ। अगली फरमाइश आई है आदब गांव कुम्हार हेरा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाहिना हसन नाजिया इब्राहिम। इन्होंने कहा है कि हमें भी एक प्यारा सा गीत सुनवा दीजिए। बिल्कुल ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और आगे हमारे इस गीत को सुनना चाहा है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवलीत कौर और करमजीत कौर रिंगली छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और ममता दंतरेगी से भगवान शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा जिला पीतल नगरी ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश सोनू राजपल काजल मानवी लक्ष्य मोहिनी और बलवीर। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद से एक और प्यारा सा गीत हिना फिल्म से।

सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्षी, साथ ही इसी अगले गीत की फरमाइश भेजी है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता, चर डोगरी पीपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू, जयकिशन साहू, योगेश, हेमा, राधिका और वासु, गांधी ग्राम गुजरात से प्रवीण, पूजा, जगदीश, जोहरी, कंचन और कुसुम सोनार, ओदव सिटी अहमदाबाद से, गांव खर कड़ा चौबीसी से गोलू सागर, सीताराम, अंशिका और तमन्ना, इन सब ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म से।

प्यारे प्यारे गीत के साथ अब बने हुए थे मेरे साथ, यानी कि स्नेह के साथ। फिर होगी मुलाकात मन चाहे गीत कार्यक्रम में, और चलते चलते देखिए इसी गीत की फरमाइश हमारे सामने आ गई है, तो सोचा क्यों ना उनका भी नाम ले दूं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन, रोजी, पर्ल और विलीज, इन्होंने लिखा है कि थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम विथ लवली सॉन्ग्स। जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। सुनिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मन चाहे गीत कार्यक्रम। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभा।

0: आई हैं और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment